0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहसिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। जब बच्चे वापस स्कूल में आते हैं तो हर कोई बच्चा अपनी छुट्टियों के बारे में बताता है कि क्या किया, कहाँ के, कैसा रहा। तो बहुत लोगों ने यही जवाब दिया कि हम दूसरे मुल्क घूमने के बाहर डेनमार्क में ही घूमे। कहते हैं कि मौसम भी अच्छे हैं, मौसम छुट्टियों में वाकई बहुत अच्छा था। इतनी ठंड नहीं थी, गर्मी थी, अच्छी वाली गर्मी जिसे कहते हैं। मैंने भी इन छुट्टियों को बहुत इंजॉय किया, पार्क घूमने फिरने के, मौसम भी इंजॉय किया, पार्क स्वीडन हर जगह हम गए, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये छुट्टियाँ बहुत पसंद आई। अगर आपको कुछ कहना है तो आपकी आवाज़ के पास आपके लिए हमेशा ही टाइम होगा। शुक्रिया।
2: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی اللہ بول یہ آپ نعت سن رہے تھے اور سامع ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج 27/8/2006 ہے اس کا پروگرام ہے لائیو پروگرام اس وقت بیٹھے ہیں 4 بجنے والے ہیں اور باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے آواز چل رہی ہے تو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پتے جو ہیں اب گر رہے ہیں پتے سبز ہیں لیکن آپ سڑکوں پر دیکھیں تو وہ پیلے پتے جو ہیں گر رہے ہیں تو موسم کے حوالے سے بھی یہ بات کریں گے ہمارے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب جو تجزیہ بھی کرتے ہیں اس کو انالائز بھی کرتے ہیں اور بیماریوں کے متعلق بھی بات کرتے ہیں اکثر کرونا کی بات کرتے تھے ابھی تو کوئی اس قسم کا کوئی وائرس نہیں چل رہا اس پر بھی بات کریں گے چونکہ یہ سارے میڈیا کو سرچ کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے ریڈیوز اور بہت سارے ٹی وی چینلز کو دیکھ کر یہ بات کرتے ہیں اوبر کی بھی وہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتی رہتے ہیں تو شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ غفور صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو آپ کے لسنر آپ کے ناظرین سب کو السلام علیکم یہ ربیع اول کا مہینہ ہے اور آج جیسے آپ نے بتایا 27 اگست ہے واقعی دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور موسم جو ہے وہ بہت پیارا موسم ہے اس کو آپ نہ سرد کہہ سکتے ہیں نہ گرم کہہ سکتے ہیں بٹوین 20-21 ڈگری ہے اور شہر میں جہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہاں پہ تھوڑی سی کیونکہ ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے اس لیے تھوڑی سی گرمائش زیادہ ہو جاتی ہے اور اس وقت ڈنمارک کی بھی سیاست اور دوسری سے دنیا کی بھی سیاست جو ہے وہ دوسری جگہ ہے سب سے پہلے آپ کے ریڈیو کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی ہمارے دو عزیز ساتھیوں کی بیگمات اس دنیا سے رحالت پا چکی ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں ایک ہمارے پیارے دوست حاجی اسلم محمد اسلم صاحب جو ہیں ان کی وائف فوت ہو گئی ان کا جنازہ کل ہے وہ آپ اناؤنسمنٹ کریں گے آپ کے پاس اس کی چیز ہے اور اوڈنسے میں میاں ریاض صاحب ہیں ان کی بھی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ان کا بھی جنازہ کل اوڈنسے میں ہی پڑھایا جائے گا تو ہم ان فیملیوں کے ساتھ جو ہیں وہ بالکل ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں روز ہمارا ایک آدھا ساتھی ایک آدھا بہن بھائی اس دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے کیونکہ جو بیماریوں میں اتنا عرصہ بیمار رہتے ہیں اور پھر اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے اور پھر دعائیں جو ہیں یہ بڑا اثر کرتی ہیں جی راجہ صاحب
0: شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا ذکر کر دیا یہ میں نے آخر میں کرنا تھا اسلم علی پوری صاحب کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں اور سبھی لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ان کی مسز کا وہ اسلامک سینٹر میں ہوگا تو اسلامک سینٹر میں جمعہ کی نماز جو ہے وہ 1:30 بجے ہوتی ہے تو ساتھ ہی نماز کے ساتھ ہی ان کا جنازہ ہو جائے گا چونکہ بعض مساجد میں 2:30 بجے نماز ہوتی ہے جمعہ کی تو بعض جگہ 2 جگہ لیکن اسلامک سینٹر میں غالباً 1:30 بجے کا ٹائم جو میری معلومات کے مطابق 1:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پھر جو ہے ظاہر خطبہ ہوتا ہے اس کے بہت ساری ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی لیکن نماز جمعہ کے بعد شاہ صاحب یہ جنازہ ہوگا جو ہے نا اسلامک سینٹر پرانا اسلامک سینٹر جو ہے تو اب شاہ صاحب آتے ہیں موسم کی طرف آتے ہیں تو شاہ صاحب بڑے چرچے ہیں آپ کی جماعت کے کاف لیگ کے چرچے بھی ہیں جو ڈینس سیاست سے آنے سے پہلے تو آپ کا بھی بڑا نام ہے جو آف دی ریکارڈ مجھ سے بھی ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ شاہ صاحب ابھی جو ہے ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ شاہ صاحب تو 24 گھنٹے ایکٹیو ہوتے ہیں مجھ سے تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب ایکٹیو ہیں یا نہیں ایکٹیو ہیں شاہ صاحب 24 گھنٹے ایکٹیو رہتے ہیں تو شاہ صاحب آتے ہیں یہ اپنی ڈینس سیاست کی طرف آتے ہیں بڑی خبریں گرم ہیں آپ کیا کہیں گے
1: جی واقعی ڈینس خبریں بہت زیادہ گرم ہیں اور بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ یہاں پہ کروٹ لے رہے ہیں یہاں پہ دو سیاستیں ہیں ایک ہماری لوکل پاکستانی سیاست ہے جیسے کہ ہم گاؤں کے داروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اصل میں پوائنٹ کچھ نہیں ہوتا اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور دوسری سیاست جو ہے کہ وہ یہاں کی ڈینش سیاست ہے جو کہ یہاں کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں مختلف پارٹیز جو ہیں वो क्या कह रही है, किसका ग्राफ ऊपर हुआ किसका ग्राफ नीचे हुआ है। तो ये तो मैं आपके सवालात के ऊपर जो भी आप सवाल करेंगे उसकी मैं बात करूंगा। तो एक्टिव एक्चुअली ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो नवंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान जाऊंगा, तो फिर सियासी जो है वो गर्मा गर्मी और दूसरा देखने का माहौल मिलेगा। दिल्ली सियासत में इस वक्त मैं देख रहा हूं कि कौन सी पार्टी जो है जो कि इस वक्त ज्यादातर फॉरनर के हक में बोल रही है, और वो इस वक्त हमारे सामने कोई भी पार्टी नहीं। और आप ये देखें कि जिन्होंने कोपेनहेगन में बहुत ज्यादा वोट लिए वो भी इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, और अगर कोई बात थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाए तो वो जो है वो हाइलाइट्स बन जाती है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को तो खैर ये नहीं कहते कि मुसलमान है, वो ये कहते हैं इस्लामिस्टा। तो इसके ऊपर हमें ये चाहिए कि अपने यंगस्टर्स को, इवन वो क्यों ना कितने बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, उनको राय लेनी चाहिए कि कौन से अल्फाज कौन सी जगह पे किस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हमारे दीन पे जो है वो कीचड़ ना उछाला जा सके। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा अपने सब लीडरान से कि अगर बात करनी हो तो पहले आपस में बात कर लें ताकि सब्जेक्ट में लोगों को जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो जी राजा साहब, आप क्या सवाल करना चाहते हैं?
0: शाह साहब आपने बजा फरमाया। शाह साहब यहाँ तो जो सियासत की जाती है वो सियासी तरीके से की जाती है, सियासत यहाँ जज्बात से सियासत की नहीं जाती। आपने देखा कि लोग अपने राय देते हैं उस, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कोपेनहेगन कम्यून हो दूसरी कम्यून जोन, तो वहाँ सारी अपनी जो है तजावीज़ दी जाती है, उस पर डिबेट होती है। जब अक्सरियत फैसला कर लेती है तो उसके बाद हर चीज़ खामोश हो जाती है, फिर नए पॉइंट की तरफ चल पड़ते हैं। उसमें कुछ ज़ातियात तो होती नहीं है, कोई दुश्मनी की बात तो नहीं होती है। सियासत दुश्मनी का नाम नहीं है, सियासत जो है जमहूरियत आगे बढ़ने का नाम है। जमहूरियत का ये नाम नहीं कि जमहूरियत को स्टॉप कर दिया जाए। तो शाह साहब आपने सारी ज़िंदगी जो है वो डायना सियासत की तरफ जो है आप देखते रहे, सारे लीडरान को आप जानते हैं, पार्टियों की सियासत को शाह साहब आप जानते हैं। लेकिन शाह साहब कुछ अरसा से जो हमने देखा है कि यहाँ कम्यून की सियासत या पार्लियामेंट की सियासत, इसको हम जहाँ जहाँ से लोग आए उस तर्ज पे करना चाहते हैं, ये एक सवाल है शाह साहब आपकी तरफ।
1: देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि सियासत हम कर सकते हैं, क्योंकि सियासत जो है वो सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। सियासत के साथ अगर आपने किस लेवल पे सियासत करनी है तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यहाँ के आईन जो है उसका उसके ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। और वो मेरा ख्याल में कि यहाँ पे बहुत ही कम हमारे कोई सियासतदान ऐसा होगा कि जिसका जो ये 100% कह सके कि मैं काफी इस चीज पे अबूर हासिल मुझे हासिल है। इसीलिए तो ये जो नए नए कवानीन बन रहे हैं, जो लॉ फोर्सेस बन रहे हैं नए नए, इस पे हम बहस करते हैं, इस पे हम बात करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे करें ना करें। इस वक्त अगर कहीं कोई बात चल रही है तो वो कुछ फॉरनर्स जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कोपेनहेगन कम्यून के अंदर, तो लिहाजा उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फॉरनर्स के बारे में है, और ये वो खुद ही आके बताएं तो बेहतर है कि वो क्या क्या चीज हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के नुमाइंदे नहीं, हम तो वो बात करेंगे जो हकीकत है, हकीकत है। और बाकी दूसरी जितनी भी कम्यूने हैं वेस्ट आइन में होगी या आप कहीं और देख रहे हैं जहाँ पे कोई हमारे फॉरनर्स या कोई ऐसी चीज है, तो वहां पे कम्यूनों के अंदर तो ऐसा कोई जो है कोई ऐसा डिबेट नहीं चल रही कि जिससे इस मुल्क के जो पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त शोर होगा या शोर गुल जो जो भी आप दोनों में चीजें ऐसे इस्तेमाल करें, वो जो मचा हुआ है उसको कूल डाउन करने के लिए कम्यूनों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि कम्यूने ही जो है वो बुनियाद होती है और ऊपर जाके बताती है पार्लियामेंट में कि हमारे जो बासी हैं, हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो लोग यहाँ हमारे रहने वाले हैं, उनमें जो फॉरनर्स हैं या दूसरे लोग हैं उनमें इंतशार पैदा हो रहा है और हम इन चीजों को रोकने में रोकना चाहते हैं और आप इस तरह के सब्जेक्ट पे बात ना करें, तो ये तो अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। अगर कोई बात कर रहा है तो वो ये बस यही कर रहा है कि मैं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे शोर करूं। तो मेरा ख्याल में कि अब क्योंकि अगले माह अक्टूबर में सितंबर एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर में मेजॉरिटी जो है कम्यून उनके अंदर बजट पेश हो रहा है और ये बजट ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा कटौती होगी और बहुत ज्यादा जो चीजें हैं उनको खत्म किया जा रहा है। मेरे इल्म में ये बात है कि बाज कम्यूनों के अंदर ये जो बच्चे जो है हैंडीकैप बच्चे जो है या मजदूर इनके इनकी भी कटौती करने जा रहे हैं, इनके भी जो पैसे हैं उनको मुख्तलिफ उनकी खेलों के या दूसरी जगह पे वहां पे भी ये जो है पैसे उनको कम देंगे, इसी तरीके से स्कूलों में, इसी तरीके से रिहायशी लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो लॉलीपॉप पकड़ के बैठी हुई है और वो कह रही है कि आओ मैं आपको गुलाब जामुन दे रही हूँ। जो पेंशनर है क्योंकि इनके सबसे ज्यादा जो वोटर होते हैं वो पेंशनर होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो पेंशनर है वो उनको हम 2 लाख अगले साल जो है वो एक बंदे की पेंशन कर देंगे जो एनडी है। और ये एक ऐसा कानून है कि एनडी को अगर आप 2 लाख देंगे पेंशन की 1,20,000 से एकदम 1,40,000-2 लाख आप कर देंगे तो फिर ये एक खतरे की गारंटी है, क्योंकि फिर हर बंदा जो है वो ये कहेगा कि मैं तो फैमिली के साथ नहीं रह रहा, वो पैसा लेने के लिए कुछ ना कुछ क्राइम करेगा। तो गवर्नमेंट को भी जो है होश के नाखून लेने चाहिए, जो फैमिलीज वाले हैं जो फैमिली के साथ रह रहे हैं उनकी मुश्किलात ज्यादा है, उनके अखराज ज्यादा है, उनको पैसा इतना देना चाहिए ना कि एक सिंगल आदमी को। सिंगल आदमी तो फिर गुजारा कर लेता है, आगे पीछे काम भी कर लेता है, लेकिन जिसकी फैमिलीज है जो फैमिलीज में रह रहा है उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए ताकि उनके हालात बेहतर हों। और यहाँ पे जो डबल मोरल इस वक्त चल रहा है कि अगर आप मियां बीबी दोनों पेंशनर हैं तो एक को पेंशन कम मिलती है और एक को ज्यादा मिलती है, और ये चीजें जो है इसके ली हिल जिसको कहा जाता है वो इसके अंदर आना चाहिए। और ये किसका काम है, ये कम्यूनों में बैठे हुए जो काउंसलर्स हैं ये उनको इस बजट के अंदर अपने फौसले देने चाहिए, ये जो बजट आ रहे हैं इसके अंदर कहना चाहिए कि हमें सड़कें कम चाहिए, हमें मकान कम चाहिए, हमें सबसे ज्यादा जो है वो तवज्जो ये देनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आए। आप यकीन कीजिए कि ये इस वक्त जो हालात है डरमा के अंदर, इसके अंदर ठीक है लोग बोलते नहीं अपनी अना की वजह से नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बेशुमार लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। और ये सिर्फ एक मीडिया है ऐसा डनमार्क का जो खामोश है। तो राजा साहब यहाँ पे हालात जो है ये इसकी बात दौड़ तो हम अपने लोगों को दे देते हैं कि ये यंगस्टर हमारी पार्टी का ये
0: बात तो बजा फरमा रहे हैं। शाह साहब देखे ना, जब भी ये इलेक्शन का जो डोल बजना शुरू हो जाता है तो कम्युनिटी भी जो है वो तकसीम होना जो है वो शुरू हो जाती है, हर कोई अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए कि मेरे पास वोट ज़्यादा है, दूसरा कहता है मेरे पास वोट ज़्यादा है, और फिर हम वही तरीका अपनाते हैं जो बीटी मेंबर का इलेक्शन का पाकिस्तान का तरीका होता है, घरों में जाना शुरू कर देता है, पर्सनली फ़ोन करके वोट मांगने। तो शाह साहब जमहूरी जो तरीका होता है, यहाँ तो किसी को दो अपने जो मियाँ बीवी घर में रहते हैं उनकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं, लेकिन आपस में डिस्कस वो ज़रूर करते हैं जिस चीज़ को वो चाहते हैं या जिसको पसंद करते हैं। तो शाह साहब हमें भी बहुत सारी चीज़ें अब तब्दील करनी होंगी, अगर हम तब्दील नहीं करेंगे तो शाह साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि कम्यून का मेम्बर कोई एक मजाक नहीं है, कम्यून का मेम्बर एक बहुत बड़ी चीज़ है, मस्जिद का इमाम एक बहुत बड़ी चीज़ है, चीज़ से मुराद है बड़ी पावर होती है, उस पर नोट किया जाता है। इसी तरह किसी जमात का किसी तंजीम का लीडर जो है वो एक बहुत हर कोई नहीं बन सकता। तो शाह साहब जो ये पावरें आती हैं जो अल्लाह ताला देता है किसी के हिस्से में कोई चीज़ आ जाती है तो शाह साहब उसको इस्तेमाल भी तो फिर सही करना चाहिए। अगर हम ईद मिलादुन्नबी की खुशी में हम अब टिक टाक पर जो है वो अपने पैगाम देना शुरू कर देते हैं, टिक टाक पर क्यों जाते हैं, वजह शाह जी ज़रा मुझे बताएं।
1: देखिए जी, वो पैसा कमाने का एक जरिया है। आप अपने जितना भी ज्यादा आपका प्रोग्राम देखा जाएगा वो आपको उससे ज्यादा आपकी जितने ज्यादा व्यूज होंगे, जितने ज्यादा पब्लिक आपको देखेगी, वो आपको आपकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। और ये इस तरह एक चीज है जो कि आप टिकटॉक पे या दूसरे फेसबुक पे या जहाँ अभी आपके अकाउंट्स है आप उसके ऊपर लगाते हैं और आपको वहां पे इसके जो है वो मुख्तलिफ डायमंड और गोल्डन और ये वो इनके अपने होते हैं वो जो आपको देते हैं कि भाई आपने इतने पैसे अब आपके हो गए। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं लेकिन असल में जो बात आपने की है वो है मसाजिद की। देखिए यहाँ पे हेलसिंगोर की मस्जिद का मैंने आपको भेजा था कि अखबारों में आया तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी बैकग्राउंड में जाए तो वो जो जमीन थी जो इन्होंने खरीदी थी टर्किशों ने, वहां पे उन्होंने कल्चर सेंटर बनाने के लिए वो जगह खरीदी थी, उसकी इजाजत नामा जो इनको मिला था वो कल्चर सेंटर का था, लेकिन अब वो कल्चर सेंटर की बजाय वहां पे मस्जिद बनाना चाहते हैं जिसकी इजाजत उनको नहीं थी। तो अब कल्चर सेंटर होते हैं जहाँ पे आप अपना कल्चर पेश करते हैं, आप मुख्तलि डिबेट्स करते हैं, आप गेम्स करते हैं, आप वहां पे कैफेटेरियाज बना सकते हैं, मुख्तलि चीजें जो है आप कर सकते हैं। ठीक है उसके साथ आपको इजाजत होती है छोटी सी बिजनेसा या बिजनेस होम बनाने के जहाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं वो आपको इजाजत होती है, लेकिन वो आपके कल्चर के अंदर आता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए बकायदा जो है वो मिनिस्ट्रियों से और कम्यून से इजाजत देनी पड़ती है। और ये जो चीजें हैं इससे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपके माहौल है इस माहौल में जो उनको प्रेस किया गया है और उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई है कि आप यहाँ पे मस्जिद नहीं बना सकते, और जो कल्चर इसी तरीके से हमारे जो दूसरे कल्चर सेंटर्स हैं जिन्होंने मस्जिद के नाम के साथ कल्चर सेंटर लगाए हुए हैं उनको भी तब्दीली लानी पड़ेगी। उनको भी चाहिए कि वो इससे पहले कि ये पानी सर से गुजर जाए, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देनी, हमारा काम ये नहीं किसी को प्रेस करना, तो उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर इससे पहले कल को कोई ऐसी बात हो इस कानून के जो बन चुके हैं तो आप या तो आप 50,000 जो है वो सिग्नेचर इकट्ठा करें और वो आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4,00,000 से ज्यादा जो है वो मुसलमान है और आप इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर आप खामोशी से
0: अपने थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आपने 4,00,000 सिग्नेचर की बात की तो शाहब
1: 50,000 की, मैंने कहा 4,00,000 बंदे रहते हैं
0: शाह साहब बात वही बात आपने ठीक की आपने बात। शाह साहब जब वोट हम लोग डालते हैं पूरे मुल्क में कितने वोट्स होते हैं, कितना गैर मुल्की शोर डालते हैं या दूसरे डैनिश भी शोर डालते हैं, शाह साहब जब वोट देने का हक आता है वोट चल के अपने घर आ जाती है, वो घर आई वोट को हम जो है जाकर डालते नहीं जिससे बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं, रहन सहन तब्दील होता है, कानून कायदे जिससे तब्दील होते हैं। शाह साहब हम वोट डालने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन सहूलियात जितनी भी हैं दुनिया की वो हम लेना चाहते हैं।
1: ये बिल्कुल आपने सही बात की है, वोट हमारे यंगस्टर्स इसलिए नहीं डालते कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे अपने बंदे हैं इनको वो अच्छे बाखूबी जानते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे किस काम के, लिहाजा वो एक सवालिया निशान छोड़ के इससे बेहतर है कि वो किसी डैनिश को या किसी पार्टी को वोट दे के तो अपनी जान छुड़ा लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपने देखा है कि SF और इनिस लिस्टन को सबसे ज्यादा वोट जो है वो कोपनहेगन से मिले, लेकिन उसके बावजूद आज क्या वो फॉरनर्स के लिए कोई सहूलतें कर रहे हैं, जीरो। तो यही चीजें जो है ये आगे चल के तो इनके लिए जो नुकसान है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो अब ये सोचते हैं, इवन जो टैक्सियां चला रहे हैं जो वाहन चला रहे हैं वो भी अब कह रहे हैं कि इतने सख्त कानून यहाँ पे लागू हो चुके हैं उनके ऊपर कि अब वो ये कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम डेंस फुलके पार्टी को या ऐसी पार्टी को वोट डाल दे कि जो हमारे खिलाफ है वो बेहतर है, क्योंकि हमारे अपने बंदे जो है ये हमारी जबान नहीं समझते, हमें बताते नहीं कानून क्या है, ये हमें कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो लिहाजा ये रुझान जो है सिर्फ चंद एक लोगों में है कि जो अपनी फैमिली बेसिस पे अपने दोस्ताना पे और ये चीजें करके वोट इकट्ठा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो वोट लेके आगे जाते हैं, और अगर कोई कामयाब हो जाता है तो उसका वही तोड़ अतवार होता है कि भाई साहब तो घर में नहीं है, बिल्कुल तो साहब घर पे नहीं है, फिर 4 साल के बाद साहब आएंगे दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर वो आपके घरों में भी आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर 4 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो राजा साहब ये मसले मसाइल बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में।
0: शाह साहब देखें, आज मैं देख रहा था एक जगह खड़ा होकर, तो मैंने देखना शुरू कर दिया दाएं बाएं आगे पीछे, तो शोर शराबा भी था, गाड़ियां भी थी, तो शाह साहब मैंने देखा हर तरफ टैक्सी ही टैक्सी है, मुख्तलिफ रंगों की टैक्सी हैं, मुख्तलिफ उनकी शक्लें हैं, मुख्तलिफ उनकी कंपनियां हैं, साइकिलें जो हैं बेशुमार हैं, फुटपाथ साइकिलों के जो साइकिल चलाने की जो जगह है वो बहुत बड़ी है, फुटपाथ जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो शाह साहब गाड़ियों का जो दाखिला शहर के अंदर, फिर मेट्रो बन गई, अंडरग्राउंड बन गई मेट्रो, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कामयाब जा रही है, तो शाह साहब हम इस शहर को क्या बनाना चाहते हैं?
1: देखिए जी, ये शहर अब जो है मल्टीनेशनल लोग जो है, मल्टी बिलियनर लोग जो है, उनका एक हब बन गया है। अब ये जो आम टेक वोमेन है या जो बड़े खुश अपने आप को तसव्वुर कर रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जर्मनी तक जाएंगे या उसके बाद फॉरन, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ये गिव अप कर देंगे और जो फास्ट प्राइसेस है लोग वो चलेंगे, और ये जो नई कंपनियां आ रही है, आपको पता है कि म्यूनिख जर्मनी के म्यूनिख शहर के अंदर म्यूनिचन के अंदर वहां ऑलरेडी उनको इजाजत मिल गई है कि बगैर ड्राइवर के वो अमेरिकन कंपनी जो है वहां पे टैक्सी चलाने की उनको इजाजत मिल गई है। अब वो पूरे यूरोप में जो है वो आ रहे हैं कि भाई यहाँ आप बगैर ड्राइवर के आप फोन करें, आप ऐप पे अपना एड्रेस लिखें और लिखें कि आपने कहाँ जाना है, आपने पेमेंट करनी है, टैक्सी ऑन टाइम आपके दरवाजे पे आ जाएगी और आपको जिस कीमत पे आपने जाना है उसी कीमत पे आपको वहां पे ले जाएगी। ना ड्राइवर सिगरेट पी रहा होगा, ना वो काफी पी रहा होगा, ना उससे कोई इस तरह की वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आप बैठ के अपने कंप्यूटर पे और वो सीधा ले जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम लोग खुद है। हम लोगों ने, मैंने और आपको इनको 2017 से वार्निंग देनी शुरू की थी कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ, ये जो तुम्हारे लीडरान है ये तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं, अपनी जो है रोजी है इस पे टांग मत मारो, ये लोग आ जाएंगे तो तुम लोगों को खत्म कर देंगे। इन्होंने पुराना कानून खत्म करके कहा जी वो जी बात ही कोई नहीं, हमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप ये देखें कि डेन टैक्सी जो है वो उबर ने ले ली थी, अब उबर ने कहा कहा कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, अब वो मेरा ख्याल में कि आधे से ज्यादा जो है वो डेन टैक्सी जो है वो अलहदा हो जाएगी, और जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जितनी कम से कम प्राइस हो ट्रेवलिंग की, यानी मीटर पे कम से कम पैसा जो कंपनी दे सकती है उसको यहाँ पे लाना चाहिए अपना डेनमार्क कोपेनहेगन के अंदर, डेनमार्क के अंदर, ताकि लोगों को सहूलत मयसर हो। तो अब जो जिन्होंने 5-5 लाख की या 4-4 लाख की गाड़ियां दी हुई है वो क्या करेंगे? जिनको एकदम कंपनी कहती है जी कि हमने तो बस आपको आपने हमारे विलकोर पे हमारे शराइत पे अपने काम करना है, और वो अगर नहीं कर सकते तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? वो तो लीजिंग का गाड़ियां ली हुई है यहाँ पे, वो पुराने वक्तों के वोटमैनशिप नहीं है।
0: ना जो हुकूमतें होती हैं वो तो रेवेन्यू चाहते हैं, वो देखे ना यहाँ टैक्स का निजाम है या सारा सिस्टम टैक्स पे चलता है, तो ये जितनी भी कंपनियां आती हैं डेफिनेट हुकूमत को ही टैक्स जाता है, कम्यूनों को टैक्स जाता है, ऑन द होल तो मुल्क को टैक्स जाता है, सारा मिलता है जिससे ये सहूलियात मिलती हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पेंशन का, बोली सीखने का, अस्पतालों के अखराजात का, ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती हैं, टैक्स से चलती हैं। पैसा तो शाह साहब आ रहा है, बहुत इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लवाजमात भी होते हैं ना। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, किसी ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें या जो कुछ भी कह लें, कि ये जो नई जो ब्रांच खुली है टैक्सी आई है, उन्होंने एक नई जगह ले ली है अपना जो है, जिसे कहते हैं डेपो बनाने के लिए एक नई जगह ले ली है। पहले तो आप कह रहे थे ना इधर दूसरी जगह थी, लेकिन उन्होंने एक नई जगह जो है वो लुंगी के पास या किधर जो है उन्होंने ख़रीद ली है। आने वाले दिनों में अगर ये बात है तो खुलकर सामने हो जाएगी। शाह साहब अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बता दें।
1: इस वक्त रूमर्स बहुत ज्यादा है कि कौन कौन सी जगह जा रहा है, कौन सी नई जगह जा रहा है। जब जैसे आपने कहा कि जब वो नई जगह पे चले जाएंगे तो फिर हम उस पर खुल के उससे पहले ही इन लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे।
0: 400 जो ड्राइवर है जो वो लाइन में है या वो अपना जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर ले चुके हैं। एक बंदा बात कर रहा था, राय साहब मैं क्यों अपनी टैक्सी रखूं, वहाँ मुझे 7 घंटे या 8 घंटे जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मैंने लिखा वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, मैंने कुछ भी नहीं करना, मुझे टूर मिला और मैंने इनकार नहीं करना। जहाँ से मुझे वो जाएंगे आएगा, टूर आएगा, वो मैंने लेना है, वो अपना काम करके मैंने गाड़ी कर खड़ी करके घर चले जाना है। ये मेरे लिए ज़्यादा सहूलत है या मेरे लिए टेंशन है, आज मेरा ड्राइवर चला गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज बीमार हो गया, आज नहीं आया। अब मैं मालिक हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैं मालिक से तो ये टैक्सी चलाऊँ, इससे ज़्यादा खुशी है, इससे ज़्यादा मेरी बचत है।
1: देखिए ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है, इन्होंने ठीक है एज ए वोन मैन आप ज्यादा पैसा कमाते थे, आपको ज्यादा सहूलतें मैसर थी, लेकिन अगर आप ये देखें ये जो नया कानून बना था जिसके मैं हम लोग मुखालिफ थे, तो ये जो उबर कानून बना था तो इसको अगर रोक लिया जाता तो पुरानी बेशक उबर भी चलती डानमार्क के, जैसे कि ब्लैक कैब इंग्लैंड में चल रही है और इसी तरीके से जर्मनी में चल रही है, तो अगर ये यहाँ पे वो पुरानी वोनमैनशिप रखते और उसके साथ ऐप को भी चलने देते, क्योंकि उस वक्त ऐप आई थी ड्राइवर की शक्ल में, यहाँ पे ऐप आई थी जो सबसे पहले कोपनहावन टैक्सा ने ट्राई की, फिर कोपनहावन टैक्सा से ये फिर गांगसियो टू अमा टैक्सी में गई और वहां पे मैंने इसके ऊपर मुखालफत की और मैंने कहा कि ये इसके अंदर बड़ी चीटिंग हो सकती है और इसको स्टॉप किया जाए और ऐसा हुआ, सबूत दिए। तो अब ये फिर भी ड्राइवर टैक्सियों की शक्ल में यहाँ पे रहेगी और हम सब लोगों ने कहा जी ऊबर तो चलेगी, ऊबर तो चलेगी, लेकिन ऊबर ने 3 साल पहले ये कहा था कि हम वक्ती तौर पे गए हैं, 2030 से पहले हम वापस डेनमार्क में आ जाएंगे और वो लास्ट ईयर यहाँ पे फुली तौर पे आ गए थे 2025 में। तो अब ये देखिए कि जब गैर कानूनी एक सुप्रीम कोर्ट जो है डेनमार्क की सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मुल्क बदर किया था वो दोबारा यहाँ पे वापस आ गए, तो अब जो लोगों के जो लोग यहाँ कम्यूनों का फर्ज है कि जहाँ एग्जाम्पल आप ये कहें कि ईसा हाय में एल्बर्स्टोन में ब्रॉनवी में आप ये देखिए कि कम अज कम 100-200 बंदा जो है वो टैक्सी से रिलेटेड है, काफी वोमेन है, काफी ड्राइवर रह रहे हैं, तो इनका जो गुजारा बसर है वो टैक्सियों पे है और अब अगर इनकी तनख्वाहें जो है वो कम हो जाती है, इनको फर्स्ट प्राइस पे 29,000 पे या 30,000 करोड़ जो है ले आया जाता है, तो ये इनके लिए मेरा ख्याल में कि ये बहुत ही कम है, क्योंकि 30,000 करोड़ के बाद अगर आप टैक्स देते हैं और टैक्स देके तो आपको 22-23,000 करोड़ जो है वो मिलता है, तो इसमें आपका गुजारा बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके साथ आपको फैसिलिटीज ये है कि आपने जैसे पहले मगजमारी करते थे कि सारा सारा दिन खड़े हैं 12-12, 13-13 घंटे टैक्सी चला रहे हैं, बुरा हशर है, अब आपको फिक्स तनख्वाह मिल रही है, आपको फेरी पेंगे मिल रहे हैं, आपको बीमारी के पैसे मिल रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपके को दूसरी गाड़ी मिल जाती है, और इस तरीके से ये जो जॉब है ये उसी तरह की जॉब है जैसे कि आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि हुकूमत ने जो ये नई कंपनियों को इजाजत दी है इसमें सबसे बुरी चीज जो मुझे लगी है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ही कम पे ड्राइवर को रखा गया है। अगर गवर्नमेंट इसका एक हाथा कर देती कि आप 40-45,000 करोड़ दें ताकि टैक्स कटने के बाद कम से कम 27-28,000 करोड़ या 29,000 करोड़ आदमी ड्राइवर अपने घर ले जाए, लेकिन अब आप सरमायादार से कैसे लड़ सकते हैं, सरमायादार के साथ गवर्नमेंट होती है, सरमायादार के साथ सियासतदान होते हैं, सरमायादार के साथ इवन आपकी यूनियंस होती है, तो लिहाजा अब सरमायादारों को आपने खुद वेलकम किया तो अब आपको सबर करना पड़ेगा। जी राजे साहब,
0: शाह साहब एक नए सर्वे जो है मेरे सामने से गुजरा, سروے شاہ صاحب میرے سامنے سے گزر رہا تھا کہ نئے ایس ایف جو ہے وہ واپس جو ہے پیچھے چلی گئی ہے کہ اسی طرح ایس ایف اس ہفتے کی جو ووکس میٹر میں واپس چلا گیا ہے. پیا اولسن دیا کے سابق مشیر کے بارے میں معاملہ پارٹی کو پریشان کر رہا ہے ایک ہی وقت میں. شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, پارٹیاں ریڈی کے علاقے جا رہی ہے, ایسا پیچھے جا رہی ہے, یہ حکومتی جماعتیں, مختلف قسم کی ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں تو بندہ کنفیوز ہوتا رہتا ہے, یہ میننگز بورڈ کہاں سے آتے ہیں؟
1: دیکھیں جی, یہ لوگوں کا یہ دراصل سروے جو کروا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پچھلے سال کس پارٹی کو ووٹ دیے, کمیون میں کس کو ووٹ دیے, پارلیمنٹ میں کس کو ووٹ دیے, اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اب آپ یہ بتائیں کہ اب الیکشن ہوں گے تو آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے. تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایس ایف کو ووٹ دیا یا ریڈیکل کو یا سوشل ڈیموکریٹ, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ پارٹیاں جو ہے جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ہزار دو ہزار آدمی یا تین ہزار آدمی جو انہوں نے ویلڈ کیا ہوتا ہے اس کو یہ اپنا ای میل پہ بھیجتے ہیں اور پھر وہ ان سے چیک کرتے ہیں کہ ان کے جواب کیا ہے, پھر ان سے موتری سوال جواب کر کے تو ایک تجزیہ نکالتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آج ووٹنگ ہو جائے یا کل ووٹنگ ہو جائے تو کمیون میں کتنی سیٹیں ہوں گی اور پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ون کر کے کون سی پارٹی کے جائیں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جتنی بھی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے میڈ فیڈرکسن وہ یوکرین کی مدد کرنے کو فلی تیار بیٹھی ہے, جبکہ یہاں گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں, مارکیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, مارکیٹوں کے اندر جو پرانے سودے ہیں وہ بک رہے ہیں, اوور ڈیٹڈ چیزیں یہاں پہ ڈیمیج مارکیٹ کے اندر بک رہے ہیں. اب 6 تاریخ کو وہ جا رہی ہے گرین لینڈ کے اندر اور وہاں پہ جا کے وہ کیا گل کھلاتی ہے, یہ ایک حکومتی سطح پہ ہے, یہ اسٹیٹ کی پرابلم ہے. لیکن ہمارے سیاستدان جو ہے جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ پارٹیاں کیا کر رہی ہیں, پارٹیاں اس وقت جو ہے وہ گم گو کی حالت میں ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, کیوں کہ اس وقت پاورفل جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈنمارک کے اندر, اور وہ بجائے ڈنمارک کا سوچ رہے کہ وہ اپنا سوچ رہے ہیں, اور اس لیے جو پارٹی ان کے ساتھ تھی. اب یہ یاد رکھیں کہ جو پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ایس ایف اور ریڈیکل وینسٹرا اور یہ الٹرنیٹو یہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی, اس گورنمنٹ کو پوری سپورٹ کر رہی تھی, اس کے بیک کے اوپر تھی, اور اب بھی جو ہے یہ اس کے حصہ بھی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. تو لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ وہ چیزیں جو بلو بلاک کی ہے, جو نفرت بلو بلاک میں اس وقت فارنرز کے اور فارنرز کے جو یہاں پہ کوئی صرف چلے اگر یہ کرمینل لوگوں کے خلاف ہو تو کوئی بات نہیں, یہ سارے فارنر کو اکٹھا کر کے تو ان کے اوپر نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اور اگر یہ پارٹی وہ بات نہ کرے
0: تو شاہ صاحب فارنر اپنی عادات کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟
1: دیکھیں چند ایک ہیں جو اس وقت لالچ میں آئے ہوئے ہیں اور لالچ میں آ کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لگے ہیں ہاتھ اس وقت مار لو ہاتھ, تو لیکن ان کو یہ کہتے ہیں جی کہ چلے پیچھے تو بنا لیں گے, یہاں پہ 5 سال ہو جائے گی 6 سال ہو جائے گی.
0: شاہ صاحب اگر آپ سروے کریں تو آپ سے میں بھی سوال نہیں کر رہا جب تک سروے مکمل نہیں ہو جاتا, آن ایئر نہیں کی جاتی بات, ویسے میں کروں اگر آگے پیچھے سروے کر کے دیکھے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟
1: سروے کرے تو یہی نظر آتا ہے کہ جو ڈینش ہے, میں تو بالکل حقیقت بات کروں گا کہ سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کر جو عام ڈینش ہے وہ ریسسٹ نہیں ہے, وہ بڑا آرام سے ہے, وہ آپ کے ساتھ ڈیلی سڑک پہ پھرتا ہے, آپ کے بیوی ہمارے بیوی بچے ہر ایک سکولوں میں جاتے ہیں, سڑکوں پہ گھومتے ہیں, وہ بالکل آرام سے ہے. جہاں پہ بھی پرابلم آپ دیکھیں گے تو وہ فالو کر رہا ہے, اگر آپ دیکھیں گے گاڑی کے آگے میو چیز ہے جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے تو اس ٹریفک کو جو توڑ رہا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ فارنر ہوگا. آپ کبھی یہ دیکھیں موٹر وے کے اوپر یہ ہمارے جو چلا رہے ہوتے ہیں واہ چلا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ٹانگیں اوپر رکھی ہوتی ہیں, سرگٹ اور کانوں میں ٹیلی فون لگایا ہوتا ہے جو غیر قانونی ہے, اور یہ سارے بہنوں میں ایسے گھوم کے واہ وہ ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک عام کار جا رہی ہوتی ہے. ان کو بالکل پرواہ ہی نہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمارا گاڑی جو ہے ہم تو آگے کیبن میں بیٹھے ہیں, پیچھے کوئی ٹکرائے گی تو مرنا تو اس نے, کار تو ہے نہیں. تو یہ ایسے ایسے کر کے اتنی خطرناک طریقے سے یہ چلاتے ہیں گاڑی کہ آپ خدا نہ خاصا کسی گاڑی کا ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں, پھر وہ ڈینش جو ہیں وہ گزرتے ہوئے وہ گاڑی چلاتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں, وہ ان کو یہ نہیں پرواہ کہ یہ افریقہ سے ہے, یہ پاکستان سے ہے, وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں, یہ سارے کے سارے فارنر ہیں, اور اس طریقے سے گالیاں

0: और इन लोगों को ऊपर सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बुरे तरीके से गाड़ी चलाते हैं और इतने बेएहतियाती से गाड़ी चलाते हैं, वहां इनको गुस्सा लगे, लेकिन दूसरों की जान भी तो है, दूसरों की ये परवाह ही नहीं करते। आप यकीन कीजिए, कुछ दिन पहले मैं मोटरवे पे जा रहा था कोपेनहेगन की तरफ, तो ये एक दो ने रेस लगाई हुई थी और वो एक दूसरे कारों को ऐसे बाईपास कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे जैसे कारों, और कई कारों वाले जो थे वो हॉर्न दे रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो ये चीजें जो है, जब मैं उनके बराबर गया जाकर ट्रैफिक लाइट पर खड़ा किया, तो यकीन करें कि दोनों को दोनों पाकिस्तानी, तो मुझे देखकर ऐसे मुंह शर्मिंदे हो गए। तो ये क्या है, शर्म आती है
1: चले
0: कि हम
1: शाह
0: लोग अपने आप को ये
1: शाह
0: कहते हैं।
1: साहब देखे ना, ये तरबियत होनी चाहिए, बताना चाहिए, बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, उनकी गलतियां हो
0: नहीं
1: जाती
0: बच्चे नहीं
1: हैं।
0: है, ये बड़े हैं, ये 21 साल से जब बड़े होते हैं तो वो बच्चे नहीं होते, वो बड़े होते हैं, वो तो हमसे भी बड़े होते हैं ज़हनी तौर पे। तो इनको सोचना चाहिए कि दूसरों की इस मुल्क के अंदर एक तरबियत
1: नहीं
0: है
1: शाह साहब,
0: कि
1: यहाँ जो
0: आपने
1: जिन सेंटर्स की आप बात करते हैं, कल्चर सेंटर्स हो गए, मस्जिद होगी, यहाँ बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, नमाज होती है, सारे बड़े बड़े इजतमा होते हैं, सारे प्रोग्राम होते हैं। तो शाह साहब, अगर इन इतनी जगहों पे जाने के बावजूद भी ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो फिर हमें अपनी तरबियत पर सोचना चाहिए, ना कि हुकूमत को गिले करने चाहिए।
0: आप मुझे ये बताएं कि कितनी जगह पे जहां इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, क्या वहां पे कोई खड़ा होकर किसी लीडर को, किसी को बात करने देता है कि भाई आप ये कानून बन रहे हैं, ये बन गए हैं, आप यंगस्टर यहाँ पे बैठे हैं, बूढ़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग एहतियात करें, किस तरह एहतियात करनी है, क्या कर रहे हैं, क्या कोई बताता है? यहाँ पे तो हम लोग जाते हैं जाके, ओए तेरे गोज किया, ओए तू गड़ी गड़ी रही, और तू फलान क्या किया, तो हम लोग तो यही चुदराट करके तो वहां से चले आते हैं। कोई किसी को सिखलाना नहीं चाहता, कोई किसी को किसी से कोई सीखना नहीं चाहता, और यही सबसे बड़ी हमारी नालायकी है। 70s में up to 90s हमने सीखा इसलिए था कि हमें सबसे ज्यादा जो लोग थे वो गांव से आए थे, उनके पास मजहब के साथ एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास दिमाग था, उनके पास जहन था, वो जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होता था उससे हर बात समझते थे, उससे कानून से पूछते थे कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त बड़ा अमन था, उस वक्त पाकिस्तानी जो थे वो डेनमार्क के फॉरनर में सबसे बेस्ट नेशन का थी, यहाँ यहाँ पे याकब आर्डर याकबसन, उसने बीबी का बाप, उसने ग्लैड सेक्शन में उसने स्पीच करते हुए ये कहा था कि ये पाकिस्तानी जो मुसलमान है, ये पाकिस्तानी कौम जो है, ये सबसे बेहतरीन वर्कर्स है यहाँ पे और सबसे अकलमंद है। लेकिन आज क्या, आज हमारे 90% बच्चे जो हैं वो हाई लेवल पे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे इतने ज्यादा काबिलियत है कि वो इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पे बैठ चुके हैं कि इवन यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 10% हमारे बच्चे हैं जो दूसरे का काम पे कर रहे हैं, वो इन 90% को जो है उन्होंने दबा के नीचे रखा हुआ है। वो हर चीज जो है वो यही समझते हैं कि हम माचो मैन हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों से कुछ सीखना ही नहीं चाहते। तो
1: चलें शाह साहब,
0: ये
1: आते हैं
0: चीजें जो
1: क्लोजिंग की तरफ आते हैं। शाह साहब, आपने देखा, आपने सारे मैंगो फेस्टिवल्स हुए, बाकी 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम हुए, सबको सब में आप जा भी नहीं सके। अगर जहाँ जहाँ गए हैं डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, जहाँ नहीं गए आपके पास इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेट होती है, लेते भी रहते हैं आप, चूँकि आपका भी तलक मीडिया से है। तो शाह साहब, आप देखें, एक तसर उभर गया था कि जी आमों के बगैर अगर आम ना रखे जाएँ, स्टॉल ना लगाए जाएँ, तो प्रोग्राम जो है वो कामयाब नहीं होता। तो हमने देखा कि उडनसे में प्रोग्राम हुआ, आपसे भी पिछली दफ़ा लाइव बात हो रही थी, आप भी वहाँ साथियों के साथ तशरीफ़ लेकर गए थे, वहाँ प्रोग्राम हुआ, मुख्तलिफ़ नेशनैलिटी के वहाँ लोग आए, मिली नगमे भी गाए गए, लेकिन वहाँ जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वहाँ तो कोई आमों का स्टॉल नहीं लगा था, वहाँ कोई समोसों का स्टॉल नहीं लगा था, वहाँ कोई चाट का स्टॉल नहीं लगा था, वहाँ कोई आइसक्रीम का स्टॉल नहीं लगा था। तो शाह साहब, अपने अपने जो नेशनल डे पर अगर आपने कारोबार करना है, तो फिर डे मनाने की ज़रूरत क्या है?
0: ये बिल्कुल आपने सही बात की है। अभी इस वीकेंड में हफ्ता एतवार को यहाँ एल्बर्ट में दोबारा यही प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जो उडनसे की आपने बात की है, उडनसे में हर साल आपको भी पता है कि वहां पे जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान वाले करते हैं उसके

0: के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और जो आदमी जो है सुबह और सजदे का शाम तक ना उसके पास नमाज है, ना उसके पास सच्चाई है, ना उसके पास खैर का काम है, उसके पास बुराई बुराई है, झूठ का झूठ है, झूठ में जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा आदमी वो है जो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है, वो नबी के तबाह करने से इनकार कर रहा है। तो आज यहाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी बना रहे हैं। आज 11 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल को जो है मुसलमान खूब जो है खुशियां बनाते हैं। तो इसके सामने अपने मुहासबा भी करना चाहिए कि हमारा अपने नबी के साथ अमली क्या ताल्लुक है। यह भी याद रखो कि दुनिया के बड़े से बड़ा कोई लीडर, उसके लिए इतना ही काफी है कि आप उसका जो है कोई दिन उसका बना लो और उसकी यादगार दिन बना लो, उसकी तारीफ कर लो, तो वो खुश हो जाएगा और या रूह खुश हो जाएगी या उसका फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के बड़ों से बड़े हैं, सारी दुनिया के लीडरों से बड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों से खुश नहीं होते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपकी तारीफ कर दी है उससे बढ़कर कोई आदमी आपकी तारीफ नहीं कर सकता है, आपकी हमद नहीं कर सकता है, आपकी तकदीस बयान नहीं कर सकता है। आपकी तकदीस, आपकी आजमत तो अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। आप जो है जो उम्मतियों का काम क्या है कि आपकी तबाह करके सुरखरू होना, दुनिया में भी आखिरत में कामयाब होना। तो मुसलमान आज हमें इस बात की जरूर फिक्र करना चाहिए और याद रखिए कि हम आज इस रबीउल अव्वल के महीने पर भी वो काम ना करें जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपके सहाबा ने नहीं किया। हर काम में वो काम करना जो नबी ने किया और नबी से आगे नबी के सहाबा ने किया, ताबेईन ने किया, तबे ताबेईन ने किया, वो काम हम जब करेंगे तो नबी से खुश होंगे। तो अपनी तरफ से कोई एक्टिंग करना और अपनी तरफ से जो है खुशी के नए मेयार कायम कर देना, ये करना, ये वो चीजें हैं जो दुनिया के लीडरों के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन नबी मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों से गनी है। हमें इत्तबा की जरूरत है। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर इसी चीज की कमी है कि आज नबी की जो है इत्तबा करने में बहुत कमी आ गई है और नबी के इत्तबा कर रहे हैं लोग बहुत सरबराह से लेकर ऊपर से नीचे तक आज इत्तबा करने में लोग पीछे रह गए हैं। और लोग जो है दुनियादारों की इत्तबा तो कर रहे हैं लेकिन नबी की इत्तबा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आज परेशान है दुनिया, मुल्क परेशान है, मुसलमान मुल्क परेशान है, इस्लामी मुल्क आज परेशान है। इस्लामी मुल्कों के अंदर आज बदअमनी है, बेचैनी है, बेबरकती है और अल्लाह के अजाब जो है जलजलों की सूरत में, सैलाबों की सूरत में, बारिश की सूरत में अजाब नाजल हो रहे हैं, तबाही बर्बादी हो रही है। और यही तबाही बर्बादी मुसलमानों हमारे इस पर यकीन है सिर्फ इसी वजह से है कि हमने नबी के इत्तबा को छोड़ दिया, हमने नबी के दीन को अपनी जिंदगी पर नाफज करना, अपने मुल्क में नाफज करना छोड़ दिया। उसकी वजह से आज सारे मसाइब की ये मसाइब मुसीबतें आ रही हैं। तो हमें आज ये मौका इस बात की दावत देता है कि हम नबी से अपना ईमानी ताल्लुक को मजबूत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है? सवा नाजरीन, ये रबीउल अव्वल का महीना है। आज जिस तरह उलमा बता रहे थे कि 11 रबीउल अव्वल है, कल 12 है, तो हर मसाजिद में, हर सेंटर में ये प्रोग्राम मनाए जाते हैं और मनाने भी चाहिए, खुशी करनी भी चाहिए, लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं उनको सामने रख कर ये करना चाहिए, खुश होना चाहिए। और ये वाकई खुशी का दिन होता है और ख़ुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन उसको एक हदूद होती है खुशी मनाने के लिए, जो है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस तरह समझना, आज ये मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है, बारिश भी लगी रहती है, धूप निकलती है, बादल है, सावन का महीना, सावन तो अब गुजर गया, सितंबर आने वाला है, ठंडी हवाएं जो आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई हैं और पत्ते भी बाद दफा फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, पीले हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह सियासत अब शुरू हो चुकी है, छुट्टियाँ गुजार के लोग आ चुके हैं, जो कम्यून की पार्लीमेंट होती है या कम्यून का जो हाल होते हैं, ज़रा हर जमात की, हर कम्यून की टाउन हॉल में, जिस तरह भी टाउन हॉल में तो पार्लीमेंट कहा जाता है, दूसरी कम्यूनों में भी ये अपनी इनकी पार्लीमेंट होती है, अपना मेयर होता है, अपना सिस्टम होता है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, रुकती कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ तजिया नगार एनालिस्ट अदनान अली अमीन हमारे साथ शामिल हैं। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम रादर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कैसे हैं रादर साहब?
1: अल्लाह का शुक्र है अदनान, आज मौसम बहुत अच्छा है, अब तो लोग छुट्टियां गुजार कर आ गए हैं, अब तो कोई बहाना नहीं है, अब छुट्टियां भी गुजार ली हैं और जो सिटी काउंसलर्स हैं या दूसरे लोग सियासतदान हैं वो भी वापस आ गए हैं और आकर काम शुरू कर दिया है, तो आपके पास क्या खबरें हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरह आप देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है?
2: दरअसल अब तो उनका वापस आना तो ज़रूरी है, अब वो काफ़ी मसरूफ़ हो जाएंगे क्योंकि ये कपल ऑफ मंथ्स के अंदर नेक्स्ट ईयर के बजट बनने हैं और हर कौम ने अपना क्या कहते हैं जो कैटलॉग होता है, फवैलती ने जो बनाना होता है वो पेश कर दिया है, तो अब वो डेफिनेटली अपनी पार्टियों के साथ साथ मसला करके उसके अंदर हिस्सा लेंगे और उनके जो की बंदे होंगे उसमें वो डील करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या बनता है। अब यही तो उनका क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पूरे साल के अंदर, कि देखना अगले साल का बजट बनाना, हर चीज़ के लिए पैसे, स्कूलों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो देखते हैं कि क्या करते हैं हम।
1: बजट की डिबेट्स तो, अपनी मीटिंग्स तो शुरू हो गई हैं, तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्या तब्दीली आएगी?
2: दरअसल हर कमून का तो अपना होता है ना, और काफ़ी कमूनों में

0: पार्टी के हेड होंगे, जिस तरह चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं, साथ जो बैठेंगे वो क्या अपने अपनी बातचीत करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से उस चीज को लिया जाता है। कुछ कमूनों में देखा जाए तो अंदाजे के करीब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा निकल आया। तो यही बात होती है कि इंसान को फिर उन चीजों पर बात देखना होता है और उनको गौर से एनालाइज करना होता है और अपनी पार्टी के साथ साथ मशवरा करना होता है। और फिर जो पार्टियां बैठ जाती हैं, ये भी लाजम नहीं है कि सारी पार्टियां बैठ के भी डिग्री हों। ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टियां डिग्री होंगी और कुछ पार्टियां बाहर हैं। ये गिवन और टेकन होता है और अब देखते हैं कि इस गिवन और टेकन में कौन कौन से ये बनते हैं, क्योंकि सिस्टम तो एक इस साल काफी चेंजेस आए हैं। कुछ कम्यूनों में जहाँ पे रेड बुक के मेयर थे वहां पे ब्लू के आ गए थे, कुछ पे ब्लू के थे वहां पे रेड आ गए थे। तो देखते हैं कि किस तरह से पॉलिसियां बनती हैं।
1: अदनान, जब इलेक्शन से पहले बड़े लोगों ने वोट दिए, इनिस लिस्टन को वोट दिए, एसएफ को वोट दिए, दूसरी जमातों को भी वोट दिए, तो बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं वो कहाँ आएंगी, कब वो इम्प्लीमेंट उनका होगा। ये जो दांतों का इलाज या ऐनकों का, इस तरह की बातें चल रही थी ना, तो ये बातें प्रैक्टिकली होंगी या बस सियासी स्टंट थे, वो ख़त्म हो गए?
0: देखिए राजा साहब, वो सब कुछ होगा वो नेशनल प्लान का, और नेशनल प्लान का भी एक बजट होता है, वो भी आने वाला है। वो मेरे ख्याल से अभी तक दिनों में आ गया है और जब वो भी आएगा तो फिर उससे वो अपना अपना काम शुरू कर देंगे। और ये प्लान कोशिश तो करेंगे वो अपने वादे पूरे करने के, और कुछ वादे उन्होंने किए थे वो भी शुरू हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या बनता है, तो थोड़ा टाइम दें फिर सब कुछ क्या कहते हैं ना ठीक होता जाएगा इंशाल्लाह ताला।
1: अदनान, जो अपने लोग हैं, हमारे अपने सिटी काउंसलर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हम उनकी तस्वीर देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, वो किसी मीटिंग में होते हैं तो हमें नज़र आते हैं, तो डेफिनेट वो अपना काम कर रहे हैं, शेड्यूल होता है वो, उन्होंने भी छुट्टियाँ की होंगी, वो भी तकरीबन सारे ही फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको कोई काम नज़र आ रहा है?
0: हाँ, हर एक अपनी कमून में कोशिश तो कर रहा है कि वो अपना जो उसने वादे पूरे करने की कोशिश की है, जो काम उनकी पार्टी के हैं उनके साथ मिलके वो अपनी पार्टी का क्या कहते हैं जो प्रोग्राम है उसको लेके आगे जाएं। हाँ वो होते हैं, मेरी मुलाकात भी हुई है सब किस बहुत सारे को साथ, मैंगो फेस्टिवल में और दूसरे इवेंट्स भी हो रही है। हर एक की सिटी काउंसलर की भी मसरूफियत है, हम लोग दूसरे की भी मसरूफियत है, तो सब लगे हुए हैं अपने कामों में। ये तो कोई नहीं है को बैठा हुआ फार, सब अपनी ड्यूटियां के कहते हैं काम कर रहे हैं।
1: अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। तो अदरान, आपका जो तजिया वो क्या कहता है कि ये दुनिया के हालात को देखें, यहाँ की महंगाई को देखें, ये सड़कों पर जो काम हो रहा है और ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है, वो किसी तरफ जो है वो कहते हैं कि कोई चीज़ ऊँट किसी करवट बैठता ही नहीं है, हर वक्त सड़कें जो हैं वो ठीक हो रही होती हैं। दरोगा हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे थिंक टैंक से तकीर हुसैन बुखारी शाह साहब ने, शाह साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा कपूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाजरीन सबको, रतनान सबको सलामुलिकुम। मौसम इस वक्त आधा बारिश, कहीं कहीं बारिश हो रही है और कहीं कहीं थोड़ी सी आग को छो रही है बारिश और धूप की, और बड़ा मजेदार मौसम है। और जैसे आपको इलम है, मैं फ्यून उड़ीसा की तरफ सफर का रहा हूँ और जा रहा हूँ मोटरवे पे, और इसके साथ जो आपके सवालात होंगे, जो मौजूदा हाजरा के सवाल जो आप डेलिस्ट नौकरी बारे में, उनका मैं जवाब देना तैयार हूँ। आप बात करें जी राजा साहब।
1: अदनान उससे बात हो रही थी तो पार्लियामेंट जो है डैनिश सारे वापस आ गए, अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, तो आजकल शाह साहब क्या नया कानून कायदा हो रहा है, आप भी बताएं, अदनान से भी पूछें।
2: देखिए जी, कानून और कायदा जो है वो अभी कुछ मसाइल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब पार्लियामेंट तो खुल गई है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोगों के वापस आने से जो डिबेट शुरू होगी वो बड़ी पेचीदा किस्म की डिबेट्स होंगी, जिसके ऊपर बजट पे लेते होगी, उसके बाद यूक्रेन की जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर डिबेट होगी, और उसके बाद जो फैदीज्म है, गुर्बत जो बढ़ी है डेनमार्क के अंदर, उसके ऊपर बात होगी।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समान, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था कि ये हमारे प्रोग्राम जो होते हैं इन्फॉर्मेशन के होते हैं, ये ना किसी के हक में होते हैं ना किसी के मुखालफत में होते हैं, ये टोटली इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है। चूँकि हम लोग लोकल हैं, लोकल रहते हैं, लोकल हमारी बातचीत होती है कि हमारी लोकल जो है कम्यूनिटी क्या कर रही है। और समान, आपको पता है कि ये जो सेप्टेम्बर का महीना और आ रहा है, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम बनाए थे और इस पर खुलकर बात भी की थी। तो अब सेप्टेम्बर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और स्वीडन में जो हमारे एक पुल क्रॉस करते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, चूँकि वहाँ भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है तो वोट का हक भी लोगों के पास होता है। तो इस वक्त तजिया नगार शायद नसीम जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे जानने की ये सारी बातें कोशिश करेंगे। शायद एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुशामद कहते हैं।
2: जी राजा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं आपको आपके शील्ड की, आपके मेडल की मुबारक दे दूं। मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा था आप नसीम में मौजूद थे, तो सफारत सफीर मोहतरम सफीर ने आपको एक मेडल या एक शील्ड पेश की, तो उसके लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। आज ही बात हुई है, आज ही आपने मुझे लिया, तो आज ही मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, और आप मीडिया पे नजर भी रखते हैं, और हमारे सबसे पुराने लिसनरों में भी आपका शुमार होता है।
2: जी जी, मैं आपका ये आप गालिबन बहुत पीछे चले गए हैं, 26 साल, आज 2026 है, 2020 में चले जाएं। तो उस वक्त मैं एक टीन एज ही था, एक बच्चा था छोटा सा, तो उसमें आपका रेडियो सुना करते थे। उसमें मैं वीकेंड में पार्ट टाइम संडे को मेरे ख्याल अपने वालद की टैक्सी भी कभी कभी चलाता था, तो उसमें आपका रेडियो पहली दफा सुना था। तो उसमें फिर कभी जब आप, क्योंकि उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, तो फिर जब पहली दफा ये चीज मैंने देखी इधर कोपनहेगन में, तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई। तो मैं तब हैरान भी हुआ कि रेडियो पाकिस्तानी रेडियो जो है कोपनहेगन की फजाओं में घूम रहा है, ये क्या है। बहरहाल पता लगा, जो बड़े मेरे से बड़े थे, जो बुजुर्ग, उन्होंने बताया वाकई ये कोई पाकिस्तानी है, गालिबन उनका राजा गफूर नाम है। तो फिर उसके बाद मुलाकात भी हुई एक निजी महफिलों में आपके साथ, आपके बच्चे भी, आप भी, तो वो फिर पता लगा कि ये
1: आप, याद होगा आप कई दफा जब आए तो खुशी से एक दफा आपकी बात में आज जरा कोट कर दूं, लोगों को बता दूं, बाज़ ऐसी बातें होती हैं। और मैं और मुबशर प्रोग्राम कर रहे थे तो आप आए, आपने घंटी दी, तो आपने कहा आए तो आपके हाथ में एक आलमन पिज़्ज़ा था ना, तो कहते हैं कि आप थक गए होंगे प्रोग्राम करके, चलें बैठ के चाय भी पीते हैं, मैं भी आपके साथ बैठता हूं। ये मैं कार्ड पे लाना चाहता हूं।
2: जी बिल्कुल, ये बात याद आई है, ये बहुत बहुत बहुत मतलब बहुत काफी पुरानी बात है, और ये उस टाइम
1: बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी।
2: हाँ, लेकिन पुरानी है लेकिन यादें रह जाती हैं, और ये वाकई ऐसे हुआ था। और मतलब मुबशर एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एक मुखलस इंसान है, वो मुझे याद है। और वो कैसी है ये चीजें जो कि यादें रह जाती हैं आदमी की, इंसान की, इंसान चले जाता है इस दुनिया से लेकिन फिर यादें रह जाती हैं। फिर क्या कहते हैं उसको, उस टाइम के जमाने मेरे हिसाब से उस टाइम के जमाने ज्यादा अच्छे थे आज की बनिस्बत। अगर मैं आज देखूं तो देखें हम बहरहाल इसके पर मैं क्या डिस्कस करूं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं।
1: आजकल जो है ना, ज्यादा वो जिस तरह नहीं होता कोला जलता है, हालांकि कोला बड़ी अच्छी चीज है, फायदे वाली चीज है, आप उस पर ग्रिल करते हैं, लेकिन आखिर में जब जो बंदा कोले से जलता है उसको पॉजिटिव लें तो वो जलने वाली चीज बड़ी अच्छी होती है, उस पर आप जो है ग्रिल करते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ जलना चाहते हैं तो फिर अब बंदा कोला आपको पता राख ही हो जाता है।
2: जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, कोले ने तो राख ही होता है आखिर में, तो उसको फिर आप दोबारा तो नहीं वापस लेके आ सकते जब कोला राख हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: शायद आते हैं इलेक्शन की तरफ, आप सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तानी निसाद भी हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा क्या लेटेस्ट पोजीशन है इस वक्त।
2: जी राजा साहब, आपने मुझे इस वक्त फोन किया, मैं इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूँ, जो उसके अंदर मेरी जो है ना खासकर, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल दूंगा कि उसमें मेरी सारी डिटेल मेरे सामने पड़ी होती है सारी, खासकर क्योंकि हर चीजें, बहुत सी चीजें बंदा इंसान भूल जाता है ताकि गलत ना हो जाए, तो मैं इसलिए अपने सामने, आपने ये लेना है इस टाइम कोई क्या कहते हैं मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ये है कि कोई कोताही अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। स्वीडन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 13 सितंबर को है, जिसमें बड़े इलेक्शन है अपने रीजन के भी हैं, कमून के भी हैं और पार्लियामेंट के भी हैं। तो मैं स्टॉकहोम की पहले बात करूंगा। स्टॉकहोम से गालिबन 5 से 6, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ डिटेल में कि मैं अपने घर ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ ना मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने आपकी कॉल उठाई, आपकी आपकी जो गुजारिश थी गुजारिश किया थी, आपका हुक्म था, तो मैंने कहा चलो मैं उठा लेता हूँ, और क्योंकि आपकी कॉल आई है। तो मैं दरअसल मैं कल चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं आज। तो उसमें ये है कि स्टॉकहोम से जो है ना तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं, दो या दो जो पाकिस्तानी है वो उसमें दो दो दो खवातीन है, ये एक का नाम सारा सारा नहीं सारा कुका नाम है, और एक का नाम जकिया बीबी, ये दो हैं। और एक बुजुर्ग है गालिबन 80 के करीब, वो भी रीजन से भी और कमाउन से भी और पार्लियामेंट से भी खड़े हो रहे हैं। बाकी एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई खटाना साहब है वो कमाउन से, और दो और जो है पाकिस्तानी वो भी वो कमाउन से खड़े हो रहे हैं। और ये जो लेडी है सारा कुका, ये खड़ी हो रही है स्टॉकहोम के साथ, एक शहर है जैसे कोपेनहेगन के साथ ग्लोस्टोप होता है, या क्यों कह लें, या कोई ऐसे क्लासक से वगैरह वगैरह, तो वो एक उसके मेयर के लिए खड़ी हो रही है। और उनके जो चांस हैं जो है मेयर के लिए, वो सुनने में आ रहा है कि 90%, 85-90% के करीब है वो मेयर के लिए खड़ी हो रही है सारा कुका। और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो, ये मैं स्टॉकहोम की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो काउंसिल के लिए, वो एक पार्टी का नाम है मिलियो मिलियोपैथी, जैसे एनवायरमेंट जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी उस तरह की एक पार्टी है। और बाकी जो दो दोस्त हैं वो सोशल डेमोक्रेट में हैं और वो काउंसिल के लिए हैं। तो इसकी मजीद डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा, अगर मैं अपने ऑफिस में हुआ तो इंशाल्लाह ताला के नामों के साथ पूरी, कि क्या है और किधर किधर से और क्या है। ये तो हो गया स्टॉकहोम से मेरे शहर यानी कि मालमो से, उधर जो है गालिबन 5 से 6 हैं, जिसमें से दो जो पाकिस्तानी हैं, तीन जो चार हैं वो पाकिस्तानी जो है, वो तीन से चार जो है मुझे अगर मुझे गलत नहीं हो तो वो कदयानी जो उनका जो जो फिरका है उस सबसे खड़े हो रहे हैं वो इधर मालमा में, स्टॉकहोम में ऐसे कोई नहीं है। तो वो और जो दो पाकिस्तानी हैं जो जो अपना जो पाकिस्तानी है जिसे हम क्या कहते हैं रियल पाकिस्तानी ये कह लें, वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक जो है वो है अपना कामरान अनवर साहब, और दूसरे अमजद खान साहब। और अमजद खान साहब भी एक बुजुर्ग से मिल रहे हैं, बुजुर्ग से मुराद के 70 के करीब उनकी एज है, और कामरान जो है वो आपको पता ही है वो एक ये
1: नौजवान
2: यूथ में
1: है।
2: ही आता है, नौजवान में कह लें नौजवान में आता है। और ये दो जो लोग हैं इनकी कैंपेन जो है जारी है, और मैं कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता। तो अभी जो है इसकी जो शिद्दत है मैं सुनने में आया, मैं आज 20-21 है गालिबन, अगर डेट मुझे गलत नहीं हो तो मेरे ख्याल है बीस
1: आज
2: इक्कीस
1: बाईस है,
2: बाईस
1: बाईस है
2: हाँ
1: आज।
2: बाईस मेरे ख्याल गालिबन नेक्स्ट वीक तक इनकी कैंपेन में वो शिद्दत आ जाएगी। तो शिद्दत से मुराद के फिर ये उसको बढ़ चढ़ के जो ना कैंपेन को करेंगे, मेरा जो ख्याल है ये मुझे सुनने में आया, तो और ऐसा होना भी चाहिए।
1: तो
2: तो
1: क्या
2: जो
1: ये बरादरी कौन सी, देखें ये सारे बेसिकली सारे स्वीडन हैं, चूंकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस पे कोई जात पात वाला तो मसला ही नहीं होता, किस ग्रुप से है किस ग्रुप से नहीं है। तो लेकिन ये जो क्या कादियानी बरादरी इतनी है जो इतने तीन मैंडेट उनके जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं?
2: देखिए जी कादियानी जो जो जो कहते हैं बरादरी की आप बात कर रहे हैं, वो उनका एक ये यानी कि वो एक मुनज्जम लोग हैं, मैंने जो देखा है वो गोथेबर्ग में भी हैं बहुत ज्यादा, यानी कि स्टॉकहोम से ज्यादा वो योथेबर्ग, यानी कि हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गोथेबर्ग, एक शहर है जो स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर जो है वो मालमो है। गोथेबर्ग में वो काफी तादाद में, मैं उसका भी पता कर रहा हूँ कि वहां पर कितने हैं पाकिस्तानी है, मेरे मुझे कल तक पता लग जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा ताकि गलत ना हो जाए। तो उधर से मुझे लगता है कि उधर से भी काफी होंगे, या अपनी जो قادیانی برادری ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک منظم وہ لوگ ہیں اور وہ تعلقات کی بیس پر, میرے ایک سننے میں ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا یار سر, وہ تعلقات کی بیس پر ایک جگہ کو لکھ رہا تھا پاکستانی جو اپنے جو ہم کر رہے ہیں الیکشن کمپین, اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ جگہ تعلقات کی بیس پر ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں. تعلقات کی بیس پر نہیں ہوتے ووٹ, یہ کارکردگی اور آپ کی جو آپ منشور جو دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہاں پر تعلقات کی بیس پر پاکستان میں کیا جاتا ہے لیکن میرے خیال ادھر بھی اب ختم ہونا چاہیے. تو یہ اس ملک ان ملکوں میں آ کے جب آپ رہ رہے ہیں 10-15-20 سالوں سے, کوئی رہ رہا ہے 10-15, کوئی شادی کر کے آیا, کوئی دماد آیا, زیادہ تر یہی ہے نا. میں میری جیسے تو کوئی کم ہے جو اس وقت یہاں پر سویڈن میں ہیں, تو جو شروع سے یہاں پر رہ رہے ہیں جن کے والد 60 سال پہلے آئے تھے یا 50 سال پہلے, تو آپ جب آئے ہیں تو آپ 10-15-20 سال یار بہت ہوتا ہے ان ملکوں سے سیکھنے کے لیے. جمہوریت کا سیاست بھی ایک, سیاست تو حرام نہیں ہے, سیاست بھی ایک بڑا اچھا بڑی چیز ہے, لیکن ایک منصف سیاست, ایک کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ساتھ, ایک لیگل لپٹی, منافقت کے بغیر, جھوٹ مکاری کے بغیر بھی آپ سیاست کر سکتے ہیں. سیاست تو کسی نے روکا آپ سے, سیاست بڑی اچھی چیز ہے کہ سیاست سے آپ جس چیز اپنے ملک کے لیے سیاست کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے مفاد کے لیے, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. میں ڈینش کی بھی مثال دوں گا آپ کو, سویڈن کی بھی, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں. ہاں ان میں بھی بڑی چیزیں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن یہ میں پھر ادھر آ جاتا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جی آپ تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کو ووٹ دیں, اور یار یہ میں پڑھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بات کی قادیانیوں کی. دوسرا میرے خیال آپ کا غالباً سوال ہوگا یہ اپنے جو پکشنی ہیں جو ہیں, تو اس میں یہ کہہ لیں جسے کہتے ہیں سنی پکشنی جلے کہہ لیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ منظم طریقے سے کریں اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمپین, اس طرح نہ کریں کہ جیسے انہوں نے کہتے ہیں کوپن ہیگن میں کیا. جو بات غلط ہے اس کو تو ماننا چاہیے نا. اگر کوپن ہیگن میں 5 لوگ دوست ہمارے الیکشن ہار گئے, بہت بڑی بات ہے یہ, تو اس کے بجائے کہ اگر یہ میں بات کروں غصہ کرنے کے, اس کی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے, جیسے یہ لوگ ڈینش لوگ کرتے ہیں, سویڈش لوگ کرتے ہیں, بڑے خوشی سے سنتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہارے ہیں اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, لیکن ہمارے یہ لوگ بہت کم اس یہاں کے بھی جو تیسری چوتھی جنریشن ہے, پھر چوتھی جنریشن تیسری بھی اور چوتھی بھی کافی کافی بہتر آ رہی ہے اور آئے گی, جو آگے آ رہی ہے چوتھی تو شروع ہو گئی ہے, اور میرے خیال اگلے 10-12 سالوں تک وہ کافی بہتر ہوگی, اور وہ اس کو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح کریں گے. برملا بالکل, وہ اگر کوئی چیز غلط کی ہے انہوں نے اس کا برملا وہ جو ہے نا میڈیا پہ آ کر پریس کانفرنس بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں, تاکہ آپ کے ووٹر نیکسٹ ٹائم آپ سے بیزار نہ ہو اور آپ کو ووٹ دیں. اور سویڈن کا بھی یہی ہے, اگر یہ اپنے اس کمپین میں بالکل یورپ کی طرح جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں یا ادھر کی جو پولیٹکس یہ کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اپنی کمپین کریں گے, تو آپ کے الیکشن جیتنے میں کافی چانس ہو جائیں گے کہ آپ کو ووٹ دیں گے لوگ, آپ کو سنیں گے. لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں, کہ آپ اس میں جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں عمل درآمد کرا سکیں گے, کیونکہ آپ وہی چیزیں بتائیں نا جس میں آپ عمل درآمد کرا سکتے ہیں, کیونکہ 3-4 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں جیسے سے, جیسے کہ ڈنمارک میں بہت سے لوگ آؤٹ ہوئے ہیں, پاکستانیوں کے علاوہ عربی آؤٹ ہوئے ہیں, ترکی کردش اوٹ ہوئے ہیں, سیاست سے بالکل ہی ختم کر دیا لوگوں نے. اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ ایک دفعہ بول لیں گے, دو دفعہ بول لیں گے, تیسرے دفعہ لوگ آپ کا فارغ کر دیں گے. تو آپ وہ چیز کریں جو پارٹی سے آپ بات کر کے جس پارٹی کے لیے ٹکٹ لیا آپ نے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, یہ آپ اپنے ووٹروں کو بتائیں, نہیں کر سکتے وہ نہ بتائیں. اور ووٹر آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کو صاف بتائیں کہ اس کا میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا.
1: بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں, اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں, آپ نے بڑی یہ میں سمجھوں کہ بڑی خبر ہے, اور آپ نے یہ بریکنگ نیوز آج دے دی ہے کہ یہاں جو ہے وہ اپنا سنی قادیانی الیکشن ہو رہے ہیں. ووٹ تو سنی کا بھی برابر ہے, قادیانی کا بھی برابر ہے, شیعہ برادری کا بھی برابر ہے, یہاں تو ووٹ سب برابر ہے.
2: میں نے آپ نے یہ کہا تھا کہ دوسرا, یعنی میں نے یہ بتایا تھا کہ انفارمیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں, میں نے یہ بتایا تھا کہ
1: ضروری نہیں ہے,
2: نہیں ہے, میں یہ بات کر رہا تھا کہ एक जो जो कहते पाकिस्तानियों का वो जो भी है उनका फिरका उसको छोड़ें, वो मुनज्जम है, मुनज्जम होके और उनके चांस ज्यादा है इलेक्शन जीतने में। उनके पार्टी जो जिस जिस पार्टी से वो खड़े हैं वो तीन है या चार है या दो, मालूमों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये शक है कि वो उन वो सीटें निकालेंगे, क्योंकि वो मुनज्जम होकर काम करते हैं, वो ये एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते। पाकिस्तानी है वो भी, जारी बात है हमारी तरह उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हमारी ममालिक से उनका ताल्लुक है, तो ये तो फिर पाकिस्तानी हुए ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आप मुनज्जम होकर कर सकते, अपनी कंपेन चला सकते हैं या अपना अपनी सियासत कर सकते हैं, इधर क्यों आप की जो है एक बात क्या कहते हैं मुंह के ऊपर और होती है, पीठ पीछे और होती है, दरमियान में और होती है, तो इधर तो फिर आप जो है ना फिर मुनज्जम ना होए। मैं इसकी मिसाल मेरे मेरा अपना मुल्क जो है डेनमार्क, उसकी बार बार दे रहा हूँ। क्यों देता हूँ बार बार, कि उसमें पांच लोगों का हारना बड़े इलेक्शन में बहुत बड़ी यार बात है, छोटी बात नहीं है। जो जो मुल्क ये सुनता है ना यूरोप के, उधर भी पक्ष नहीं है, वो हैरान रह जाते हैं, किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता लगता है, कहते हैं ऐसे हुआ है, मैंने कहा जी ऐसे हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी उसका जाला नहीं अभी तक किया कि क्या हुआ है, उसकी अभी शर्म नहीं आई, या मुझे तो आ गई है कि शर्म आ जाए कि यार ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसे क्या किया आपने, आप इधर की सियासत कर रहे हैं, इधर की सियासत में आप इधर ही की सियासत के लोगों से मिलें, इधर की ही कंपेन चलाएं और इधर ही की मशहूरी करें, इधर ही की पार्टी की। ज्यों ही आप किसी के पीछे लग के दूसरी दूसरे मुल्क की सियासत को करेंगे आप अपनी कंपेन में शामिल, लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, वोटर आपको देख रहा है, तीसरी जनरेशन चल रही है वो आपको देख रहा है, ये दूसरी पहली जनरेशन नहीं है जिसमें आप ओए छड़ो यार कोई नहीं गल, ओए पुत्र वोट पा दे, अब ऐसे नहीं है। मेरे घर के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, अभी 13 को जाना है ना, मैंने किसी पार्टी को डालना है, मेरे बच्चों ने किसी पार्टी को, मेरी बीवी ने किसी पार्टी को डालना है, और मैंने बात भी की कि कहते पापा तू खा तू खा फसल लॉस वो उसके बीच टाइम, सो खत्म बात हो गई,
1: बिल्कुल,
2: खत्म।
1: क्योंकि जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी तरीके से आप बात करें, चूंकि इसको आप एनालाइज कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, टैक्सी ब्रांच का भी आपको बहुत तजुर्बा है, इसको हर चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं, बहुत सारी कंपनी

नंबर में ऑलरेडी कुछ लोगों के यहाँ से इनके साथ रवाबत हुए थे, ऊबर के साथ, कि कैसे आपने आना है, ये भी छोड़ दें, ये सबको पता है। 2025 फरवरी में इन्होंने बकायदा आगाज शुरू कर दिया ऊबर का। ड्राइवर एक टैक्सी कंपनी थी छोटी सारी, जिसके अंदर गालिबन 40-50-60-70 टैक्सियां थी, या 100 कर लें, उनके साथ मिलकर छिल खुद कहते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच होके आप आ सकते हैं। खाली उबर नहीं की इजाजत नहीं मिली थी उनको, यानी कि गायन उबर, यानी कि बिल्कुल खाली उबर जो है, क्लीन उबर, सिर्फ खाली वो चलाती, लेकिन उनको किसी किसी किसी कंपनी के साथ सहारा लेके उनको आना पड़ा और वो आए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर धूम मचा दी। उधर भी हमारे जो पाकिस्तानी वॉनमैन है, मैं भी इंक्लूड हूँ, अपनी बात भी करूंगा, वाले साहब रहे हैं, सब समेत जो मैंने सुना, बल्कि सुना अपनी अपने कानों से सुना, लोगों ने कहा ओ कुछ नहीं होता उबर इसके, ये ऐसे मैंने बड़ी सेल्स कैंपों के अंदर भी सुना, वहां पे भी कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, पाकिस्तानी जैसे स्टाइल है हर चीज में रिलैक्स कर जाए। पता क्या हुआ फिर, उबर ने जनाब इनको ना फरवरी में आई, जून जुलाई में जनाब इनका एग्रीमेंट हो गया सबसे बड़ी कंपनी डैन टैक्सी के साथ, यानी जो पहले कुरियर होती थी डैन टैक्सी, जो पूरे शेलन में है, उसके बाद पूरे यूलन में और पूरे स्वीडन में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है। एग्रीमेंट क्या हुआ, उन्होंने खरीद ली, ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली। अब ये किसी को नहीं पता कितने मिलियार्ड की खरीदी है या कितने मिलियंस की खरीदी है, कंपनी बहुत बड़ी है, उनके पास इनकम है, इनचेक जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनके पास अवैध खून है, यानी कि उनके पास कंपनी के खोचो खोसला, उनके पास डीएसपी है, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ये जो होते हैं उनके पास, ये सिर्फ हाली टैक्सी नहीं होती जैसे आप मैंने बुक कराई है, ये तो कोई इसके ऊपर नहीं आपकी कंपनी चलती, इनके पास बड़े बड़े जो है ना आउटसेल एग्रीमेंट है डेनमार्क में, हाली कोपनहेगन में नहीं है, पूरा शेलैंड, उसके बाद यूलैंड और फ्यून सारा, बहुत बड़े बड़े कितने मिलियंस की है, 200-300 कपल ऑफ 1400 मिलियंस की इनकी आओ चले हैं, वो उन्होंने खरीद ली उबर ने, और उबर ये जो ना पूरी मार्केट जी तकरीबन वो ले गया तकरीबन। अब क्या हुआ कि 2026 में, यानी कि जून जुलाई जून में ये इसकी बाजगश्त हुई, ग्रीन एसएम, यानी कि वियतनाम टैक्सी तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका असल नाम जो है ग्रीन एसएम है। ग्रीन एसएम ऑलरेडी जो है ना वियतनाम और चाइना और इंडिया और इन मुल्कों में आ चुकी है 2025 में, यार वियतनाम तो पहले की चल रही थी, और ग्रीन टैक्सी ग्रीन एसएम जो है इसके बाद स्वीडन, इसके बाद जर्मन, इसके बाद ओस्लो, स्वीडन इसी साल जा रही है। और उन्होंने जो मुझे जो मैंने देखा सुना है, उन्होंने ये चीजें कोई फ्री नहीं होती, उन्होंने ये डेनमार्क में हेसल हॉल, यानी कि एवल हॉल जो इंडस्ट्री कुछ है सबको पता है, उन्होंने वहां पर जो बहुत बड़ा ले है, जो इसे स्वीडिश में कहते हैं लॉगर, जो ले है वो बहुत ही बड़ा, मैं समझ तो 5-6 हज़ार करोड़ मीटर से ज्यादा कर लें बार भी, वो उन्होंने पहले तो ये समझे थे कि उन्होंने लाया किया है, लेकिन जो मैंने पूछा है उधर उनसे, उन्होंने कहा उन्होंने खरीद लिया है, तो हो सकता है खरीद लिया हो, तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो उसके उसी को पीछे से या आगे से तोड़ के तो उसका ब्यूगा करने लगे हैं, तो उसके अंदर उनको काफी जो है ना उन्होंने उसको एडजस्टमेंट करनी है। एक तो ये हो गया। अब ये 600 गाड़ियां जो है ना, ये इनकी तकरीबन ऑलरेडी 400 या 300 या के करीब, ये आधी से ज्यादा गाड़ियां इनकी ऑकुपाइड हो गई हैं, जो चढ़ गई हैं, ड्राइवर इनके तकरीबन 500 से ज्यादा जो है, 500 के करीब जो है ना एग्रीमेंट बन चुकी हैं, किसी ने सितंबर में शुरू करना है, किसी ने अगस्त में, किसी ने नवंबर में, वगैरह वगैरह, और वो साथ में कोर्स भी करा रहे हैं साथ में। अब किसी कंपनी ने बाहर से इतनी बड़ी इन्वेस्ट की है, वो हाली इन्वेस्ट जो इधर डेनमार्क में की है, स्वीडन में करने जा रहा है, जर्मन में है, और यूरोप के मुल्कों में करने जा रहा है, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि उसके पीछे स्टेट नहीं है, उसके पीछे जो स्टेट है वो उन्होंने थपकी नहीं दी, ये ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मुल्क जो है वो आपको वेलकम ना करें और आपकी हेल्प ना करें, जो जो चीज उन्हें जो जो चीजें उनके चाहिए होती हैं, जैसे कि अब वो भी चाहेंगे कि हमारी हमारी भी औचले हों कमोनों के साथ, फ्लेक्स के साथ, कॉन्ट्रो खोचले हों, ये वगैरह वगैरह ये चीजें, मेरा ये ख्याल है कि वो इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं और वो ये मार्केट लेने की कोशिश करेंगे।

0: ये मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे क्यों, लेकिन उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उनको वो लोन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल है उनके और वो इसी पे काम करने लगे हुए हैं। हाँ अब मैं आ जाता हूँ, आपने बात की थी वोनमैन, पक्षनी, अरबी, तुर्की, डेनिश, जितने भी वोनमैन है हम अपनी भी बात करेंगे, पक्षनी ये सबसे ज्यादा है। इनका फ्यूचर मुझे कोई अब अच्छा नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये मार्केट उन्होंने लेके जानी है क्योंकि वो खुद ही वॉनमैन है। एक तो ये हो गया कि वो इसे उर्दू में आप आसानी से ये कह लें कि वो एक ऐप नहीं है ग्रीन एसएम, क्योंकि जो उबर है वो एक खाली ऐप है, वो आप ऐप लेते हैं या उसको आप उसका जो 20% या 18% या 25% उसका आप पे करते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी अपनी होती है। मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा, लेकिन जो ग्रीन एसएम है गाड़ियों की अपनी है, वो खुद ही वॉनमैन है और खुद ही वो गाड़ियां भी बनाते हैं अपनी, वो कंपनी उनकी गाड़ियां भी अपनी ही कंपनी में बनती हैं और वो कंटेनर के कंटेनर यहाँ यूरोप की तरफ बनवाना है, जिधर जिधर उन्होंने ये करना है, पड़ाव डालना है। अब ये जो चीज है मुझे जो शक है ये वोनमैन की मोनोपोली खत्म करने के लिए इन्होंने सिर्फ डेनमार्क नहीं दूसरे मुल्कों में भी जिसे कहते हैं आया है ना छाक्सा आया है ना वोनमैन, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि इसको अपने पास रखो, अपने कंट्रोल में कर लो। इस तरह की उन्होंने कंपनी को दावत दी है जो ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुकी थी, तो उनके साथ ये बमामला जो है इनके 1-1.5 साल से बैक चैनल चल रहे थे। ऐसे कोई नहीं आ जाता अचानक, ऐसे कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करता कहते हैं हेल मलियान या इन मलियाड। और आपको पता है कि जो 400-500 ड्राइवर अभी चढ़े आए हैं उनको अगले महीने तनख्वाह भी देनी है और वो तनख्वाह अभी कोई उनकी इनकम नहीं हुई, अभी उनकी ऑप्शन जो है चल रही है या नहीं चल रही वो बात की बात है, वो तो आपको पता लग जाएगा सबको। लेकिन उन्होंने लोन तो देना है, कुछ लोगों को लोन मिल गया जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई में शुरू किया था काम, अब तो अगस्त का एंड आ गया तो उनको लोन मिल गया मुझे सुनने में, और उनको पूरा लोन मिला है। मैंने खुद पूछा, मैंने पूछा आपको लोन मिला, उन्होंने कहा जी मुझे लोन मिल गया जो इस महीने के उनको मिलना था और मैं जुलाई के, तो वो बहुत से लोगों को मिल
1: इसका
0: गया
1: मतलब है
0: जो
1: कि ये पैसा सारा सिस्टम है, आगे इस पर लेफ्ट राइट नहीं हो सकता।
0: मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें लोन मिला ना, क्योंकि हो एल आर के साथ उन्होंने ये कोई हंकी बैंकी नहीं है उसमें, मिलके बना के उन्होंने वो बैठे हैं उनके साथ बना है सारा कुछ उसमें। ये जो अभी जो पैसे जो इनके चंद 150 जो पहले थे इनके शोफेयर उनको लोन मिला ना, वो हालांकि उनकी इनकम कोई नहीं हुई ड्राइवरों की, बहुत कम इनकम ना होने के बराबर, क्योंकि उनके ऐप में भी छुआ नहीं है जो आए, वो कल छुआ ही उठा रहे हैं और उठाते हैं और अपने 7.5 घंटों में, 7.5 घंटे उसके आधा घंटा था उसका 8 घंटे, 7.5 घंटे में अपने काम करके जो बनाया है वही है, उसके ऊपर वो उनको कोई इतराजात नहीं है इस वक्त। और पहले बाद में भी जब उनके पास ऐप में छुआ आ जाएंगे जो उनकी औचले होंगी, आपने हर छुए को यस करना है, आपने ना ही नहीं करना क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपको वो तनखा दे रहे हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर रखी हुई है कुछ परसेंटेज, यानी कि आप किसी को वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वॉशरूम भी आ जाता है या वगैरह वगैरह 2-4 मिनट के लिए तो आप उसमें पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपका आधे घंटे का पॉज एक लादा है, लेकिन जब आपको छुआ आ रहा है आपने यस करनी है क्योंकि आप तनखा ले रहे हैं उनसे पक्की, यानी कि फेस्ट लोन ले रहे हैं आप उनसे, तो आप मजाज नहीं है कोई नए करने के किसी छुए के, जब जब ये शुरू होगा उनका बकायदा, अभी तो चल रहा है। और उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लोन मिले हैं 100-70-80 जो शुफे पहले के थे वो कितने मिलियंस होंगे, वो उन्होंने अपने जो उनके पास जो उनका अकाउंट या जो भी वो पैसा लेके आए हैं अपने पास से दिए हैं। मैं ये बता दूं कि अपने पास से कोई नहीं देता, ये तो अभी दिए हैं, जब उनकी औचलें वगैरह चल जाएंगी, जब उनके साथ कमोनों के साथ या जिधर भी वो करना चाह रहे हो जाएंगी, कितने वो मिलियंस की इतनी कमोने हैं, सैकड़ों कमोने हैं यहाँ पर शेलन में, जब उनके साथ हो जाएंगी, अगर आदियों के साथ भी हो जाएं जब हो जाएंगी, तो फिर ये जो पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया, ऐसी जो जो बिजनेसमैन काबिल बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो फिर उनका वापस डबल से ज्यादा वापस आएगा। तो ये है उनकी जो है
1: इसका
0: प्लानिंग।
1: मतलब है उन्होंने
0: और
1: अपना जो इन्वेस्ट किया उसको सबसे पहले सेव किया है, गवर्नमेंट के साथ जो है अपनी बातें कमून के साथ अपने एग्रीमेंट किए हैं जहाँ से ये सिस्टम चलता है, अब वो जो है कोई पैसा जो है वो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कंपनी का।
0: देखिए जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये किसी को उन्होंने नहीं बताया, यहाँ पर किसी मीडिया को नहीं बताया कि अभी फिलहाल बहुत से लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे आए, किसने कौन इनके पीछे है, ये सिर्फ क्यास रही हैं। लेकिन जो आदमी आप जैसा और यहाँ पर सब लोग अकल आप जैसे लोग अकल बूझ रखते हैं कि ये तो खुद भी सोचे ना कि जब आप एक दिन 10 दिन 1 माह 1.5 माह हो गया आप देख रहे हैं तो फिर पता आपको लग जाता है। जब आप अंदर भी जाते हैं पूछते हैं थोड़ा बहुत तो आपको ये पता लग जाता है कि ये इसके पीछे स्टेट इन्वॉल्व है, वो साथ है। ऐसे ही दूसरे मुल्क में आप अपना, मैं अगर बिजनेस लेके जाऊं मैं कहूं जी मेरे पास 1 बिलियन डॉलर है मैं यहाँ बिजनेस, आपकी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आपकी स्टेट करेगी, वो कहेगी पैसा आ रहा है, आपकी मदद करेंगे, आपको जो जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे आपके वगैरह वगैरह। तो इसी तरह
1: फैसिलिटेट किया जाता है। चलिए शायद आते
0: इसी
1: हैं
0: तरह, बिल्कुल
1: इसी तरह जिस तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं, पार्टियों में किस तरह लड़े जाते हैं, ये जो कारोबारी लिहाज से जो लोकल ये टैक्सी चलती है इसका क्या सिस्टम होता है, और आगे पढ़ते पढ़ते दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें चली जाती हैं। शायद हमारे मुल्क में जहाँ भी पूरी दुनिया में हमारी सियासी पार्टियाँ सारी खुद कफील हैं पूरे मुल्कों में, उनकी भी टैक्सियाँ वहाँ मौजूद है। मैं कहता हूँ ये जो पार्किंग प्लेस हैं सारी पार्टियाँ ये पार्किंग प्लेस हैं, ये सियासतदानों की टैक्सियाँ हैं, इनकी जो है वो पार्किंग की जगह है। ना कोई हमारा मेंबर बना पार्लियामेंट में, कोपेनहेगन की बात करूँगा, अगर डेनमार्क की बात करूँगा, स्वीडन में आप देखते हैं हमारे कितने मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के बनते हैं, तो कहीं भी हम फिट नहीं हो रहे। अब पाकिस्तान की सारी चीज़ों को मिला के देख रहे हैं तो लेकिन ज़्यादा सियासत जो है वो पाकिस्तान की जाती है, आप किस तरह देखते हैं सियासत को पाकिस्तान को?
0: मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपने स्वीडन के इलेक्शनों की बात की थी और डेनमार्क के, मैंने यही बताया है कि जब तक आप अपने मुल्क पाकिस्तान की जो सियासत है, अगर ये कोई किसी को अगर गलत लगे मैं उसे माजत कर लेता हूँ, क्योंकि सामीन सुन रहे हैं यार, पाकिस्तान की सियासत आपको सबको पता बहुत गंदी सियासत है। वो गंदी सियासत को वो कहते हैं समझने के लिए हजारों साल भी कम है। तो वो क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तो हर सेकंड बाद बदलती है, वो सियासत उन्होंने आई तो आप जब उस सियासत को, मैं ये बता रहा हूँ इधर जहाँ रहते हैं इधर भी करेंगे तो फिर यहाँ पर आप अपना अपना ही मजाक बनवा लेंगे। लोग मजाक करते हैं देख के, ये कोई खुशी नहीं लोगों को हो रही होती, देख रहे होते हैं सारे लोग, से मुराद है कि पक्षनी भी और दूसरी नेशने भी, किसी को खुशी नहीं हो रही होती, वो आपको देख के हंस रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं मस्करे सारे। मैं आपने बात की पक्षनी जो सियासत करते हैं यहाँ पर यूरोप में, मैं हाली डेनमार्क की बात नहीं कर रहा, तो वो फिर जब आप इस तरह के मस्खरापन करेंगे तो लोगों ने तो आप लोगों में आप कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटी में मजाक बनाएंगे। ये जो डेनिश हैं स्वीडिश हैं नॉर्वेजियन है जर्मन जहाँ भी चले जाएं वो आपको देखते हैं, ये नहीं कि उनको सारा पता होता है, वो ये लोग खामोश तबीयत के हैं, खामोशी से सारा कुछ करते हैं, ये बातें नहीं ज्यादा करते, जनरली बात करता हूँ, इनमें भी लोग बुरे होते हैं लेकिन इनमें भी लोग होते हैं इस तरह के, लेकिन वो जनरली ऐसे नहीं है ये लोग बातें नहीं करते, ये काम करते हैं। ये नहीं है कि इन मुल्कों में ऐसा नहीं था, इन मुल्कों में गंदी सियासतें नहीं थी, इन मुल्कों में जबरियत नहीं थी, फिरौनी 100 साल पहले ऐसे ही था, 100 साल पहले ये इन्होंने ये सिस्टम जो है ना लड़ लड़ के कौमों ने इनकी कौम लड़ी, इनके लोग लड़े, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इनके लोगों ने, हाली जंगे नहीं लड़ी इन्होंने एक दूसरे से, इन्होंने सियासी ये जो सियासी इसके लिए जमहूरियत के लिए लड़े, यहाँ पर तो बादशाह थी पूरे यूरोप में बादशाह थी पूरे, आपको पता है आप हिस्ट्री पढ़ें जाके, स्वीडन की बात कर लें डेनमार्क की बात करें, यहाँ तो जुल्म था, यहाँ ये बादशाह होती है ना जुल्म ही होता है, ये एक बंदा सबको कह रहा है जो मैंने कहना वही आपने मानना है, इधर ऐसे था, लेकिन फिर यहाँ कौमें लड़ी, लड़ने के बगैर आप कुर्बानियों के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही बादशाह के सारा था कब्जे में, बादशाह जो है यूरोप का यानी कि स्वीडन का या नॉर्वे का उसके उसके तो इंसाफ वही करता था, जज जो है वो इंसाफ जिस उसने करना है वो बादशाह के हुक्म पर उसने करना है, तो काहे का जज, इधर ऐसे था। फिर ये लोग लड़े, इन लोगों ने कुर्बानियां दी, 1 साल नहीं 2 साल नहीं कई साल लड़ते रहे, आखिर में ये इनकी जीत हुई, घर बैठने से हाथ में हाथ बांधने से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मसखरापन फजूलियात ये चीप हरकते हैं यार, ये क्या है, क्या हुआ आप, जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलोगे आप ऐसे ही रहोगे जैसे 1400 साल पहले मैंने सुना था कि जहलियत है, आप उससे भी आगे निकल जाओगे। 1400 साल की जो जहलियत सुनते थे ना वो कुछ भी नहीं है, उससे भी आगे निकल जाओगे, बल्कि निकल गए हो। तो ये है कि आप ईद मुल्कों में रह के इन कौमों से जब नहीं सीख पा रहे तो यार फिर तो मैं क्या उसके ऊपर करूँ तबसरा, मजीद तबसरा ही पे रह जाते हैं।
1: तबसरा क्या, आप देखे ना मुनाफिक आदमी जो होता है जिसके मुंह पे होता है उसी का होता है, वो उठ के चला जाता है दूसरे पे चला जाता है, तो यही सियासी पार्टियों का है,
0: यही हमारे हमारी जो कौम का हमारे जो सिस्टम का अलमिया है कि आप देखो क्या कर रहे हो। मैं गालिबन ये चीजें देखता रहता हूँ, कभी देखता हूँ इधर इधर इधर स्वीडन का भी चलो बात कर लेता हूँ। यार स्वीडन के अपने मुल्क की जहाँ रहता हूँ मैं जी, फोटो लग गई है एम्बेसी के पास बैठा हुआ है, एम्बेसी को अलविदा अलविदाई, अगर मेरे से उर्दू का अलविदाई उसको सलाम पेश कर रहा है, फोटो लगा दी है। यार क्या हो गया है, यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यूरोप के जो एम्बेसडर उधर गए होते हैं दूसरे मुल्कों के एम्बेसी में, पता ही नहीं किसी को था कब आ गया क्या ही नहीं। वहां के जो उधर के लोग हैं जिन मुल्कों में, स्पेन में डैनिश रहते हैं, पता ही किसी को डैनिश को नहीं है। स्पेन में डैनिश रहते हैं ना, अमेरिका में डैनिश रहते हैं, उधर एम्बेसडर है ना उनके, आते हैं किसी को पता, देखिए किसी किसी किसी डैनिश की फोटो, आम शहरी की एम्बेसडर को सलाम कर रहे जाके, फोटो लाती फेसबुक पे, हाय यार देख के मुझे हंसी आ जाती है, क्या कर रहे हैं, कभी हो गया यार, चले गए आप कोई अपने काम से, उन्होंने क्या फड़ के लाती, चलो जी हो गए सलाम जराना पेश, वो तू कौन है जराना, तू कौन होना है जराना पेश करने वास्ते, जोहराना ये अगर उर्दू मेरी गलत है तो, जोहराना इसी को कहते हैं ना खाने को राजा साहब, जोहराना जी आपने पेश कर दी है,
1: बिल्कुल मास्टर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यार ये बात है, आप पैदा यहां हुए हैं उर्दू बोल रहे हैं,
0: ये कोई बात है करने वाली यार, ये मैं देख कर आना होता हूँ, फोटो लग गई है यार, इन चीजों से निकल आओ। एम्बेसडर आया एहतराम के काबिल है, जा रहा है, खत्म हो गई बात, पैसे हमारे हैं, खजाने से निकल रहे हैं, तू कौन है जोहराना पेश करने वाला, उन्हों इस तरह आपके मुल्क में ना जो ये ना ये काम खराब हुए हुए हैं नीचे दिखाने के लिए दूसरे को,
1: इसका हल क्या है,
0: मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ
1: इसका हल बताएं, हल क्या है, आप चूंकि यहाँ पैदा हुए, आप
0: मैंने
1: भी इसका अभी डैनिश भी बोलते हैं इंग्लिश,
0: मैंने आपको अभी इसका हल बताया है। जब तक आप दूसरे कौमों की तरह, दूसरे जो लोग हैं और भी है ना उनकी तरह मुनज़म नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने मुनज़म होना नहीं है, मुनज़म नहीं होंगे आप ऐसे रहेंगे, आपने खुद ही कहा है मैं मुनाफ़िकत, हाली मुनाफ़िकत नहीं है, झूठ मुनाफ़िकत मकारी, तीन चीजें, मकारी आपके मुंह के पर नजर आ जाती है जब वो मुस्कुरा रहा होता है कि ये मकार आदमी, मुनाफ़िकत तो है ही है, मकारी सबसे बड़ी चीज है, फिर झूठ, ये तीन चीजें आप मेरा वो डीपी देखें बड़ा मशहूर है।
1: बात याद रखें कि पिछले दिनों बहस हो रही थी कि बीमारियां होती है ना, एक मालिया खौलिया की बीमारी होती है, हम इसी को लेते हैं, कोई जहनी मरीज किसी को कहता है, लेकिन और भी बीमारियां अगर देखा जाए तो बंदों का कसूर भी नहीं होता, वो चूंकि वो बीमारियां उनको लगी होती हैं, आप उनका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए साइकोलॉजिस्ट जब बैठता है ना, वो उसको घंटा घंटा दो दो घंटे टाइम देता है, खाली उससे बातें करते रहते हैं, वो जहनी मरीज इस तरह के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इसको ये बीमारी है।
0: राजा साहब अभी आप मेरी वो डीपी जो है ना उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो काइंडली वो डीपी जो है मेरी उसका जो सामने जो मेरा वो है उसको पढ़ें, अभी पढ़ें तो, ताकि आपको मैं बताता हूँ क्या है वो।
1: बड़ी अच्छी बात है और आप अक्सर बात इस पर करते भी रहते हैं, लिखा हुआ है आपकी जो शिनाख्त है जो आपने अपने लगाया डीपी लगाया हुआ है, मुनाफ़िकत दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह पे ऊपर दोस्ती का नाम है, ये तो एक ऐसा खूबसूरत अल्फाज हैं, शेर लिखे हैं, ये सब के लिए, ये किसी की मुखालफत में नहीं है, किसी के हक में नहीं है,
0: ये चीज जब ये चीज आप खत्म कर देंगे ना, ये जो कौम है पूरी, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है मुश्किल काम है हमारी खासकर कौम हम लोगों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाएगी ना, ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है ये सारा, तो आप जो है ना राह रास्त में आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल और खटन है, ये नहीं पता कब है, शायद 100 साल लग जाए, 100 साल बड़ा, शायद 1 साल में खत्म हो जाए, लेकिन 100 साल में पता नहीं, हम तो नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, तो 100 साल किसने देखा है, लेकिन वैसे भी ऑलमोस्ट हमें 78 साल हो गए
1: इस जमहूरी निज़ाम में, अब हम जमहूरियत की भी नफ़ी करना शुरू हो गए हैं, ये भी प्रोपेगंडा हम लोग शुरू कर देते हैं। इस जमहूरी रहते हुए अगर आपको वोट मिले आप मेंबर बन गए, आपको वोट मिले तो अभी रीजन के मेंबर मिल गए, अगर आपको वोट मिले तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, पार्लियामेंट को आप वोट मिले तो आप वज़ीर आज़म बन गए, ये तो एक जमहूरी निज़ाम है, कौन किसी को रोक रहा है?
0: कोई किसी को नहीं रोक रहा। और राजा साहब एक और बात, जब आप इलेक्ट हो गए हैं, आते हैं ना आवाम आपको सिलेक्ट करती है, तो फिर इलेक्ट हो गए हैं आप, तो आप उसमें आ गए हैं, तो जब आपने किसी वध में, ये इधर की बात कर रहा हूँ अपने यूरोप की, तो हमारे जो ओवरसीज पक्षनी हैं, भाई हैं, बहने हैं, तो वो जो वादा करते हैं ना, वो फिर अपना वादा 100% नहीं तो कम अज कम 80-90% पूरा किया करें अपनी अपने अपने क्या कहते हैं वोटरों के साथ। ये मेरा बार बार कहना है। तो मैं आप वाली बात फिर, जब तक आप अपने सारे ओवरसीज पूरी दुनिया में, जब तक आप पक्ष नहीं, गंदी सियासत, गंदी तरीन सियासत है, अच्छी सियासत भी लोग करते हैं लेकिन गंदी तरीन सियासत को आप खत्म नहीं ना करेंगे, आप तरक्की भी नहीं कर सकते किसी चीज में। यूरोप में भी पीछे रह जाएंगे हर एक से, हर महाज में पीछे रह जाएंगे, नहीं कर सकते तरक्की ये, क्योंकि यही अल्लाह ताला का सूल है, यही कानून है। अल्लाह ताला के सूल और कानूनों को तो नहीं अवरद कर सकते ना, अल्लाह ताला तो देख रहा है हर वक्त, अल्लाह ताला तो आपको लम्हा लम्हा देख रहा, सुन रहे, उसके साथ तो नहीं ना आप कहते मकारी यारी कर सकते, यारी भी तो करते हैं ना हम लोग।
1: देखिए ना, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया, क्या वो काम हम करते नहीं है?
0: हम वो काम नहीं करते, अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया हम वो काम करते हैं, अल्लाह ताला के रसूल ने जिन चीजों से मना किया वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। लेकिन ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये दीन को भी इस्तेमाल करते हैं यार, दीन को भी, दीन भी आज कुरान भी आपको आज कल पैसों में बिकता है, दीन भी आपका बिक रहा है पैसों में, यानी कि सुबह दीन को इस्तेमाल करता है, रात को शैतान बना होता है बंदा, वही दोबारा सुबह या रात को शैतान है वो पूरा, सुबह वो दीन को इस्तेमाल कर रहा है टोपी पहन के, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो क्या खत्म हो रहे हैं यार मी शरीफ के फलां जगह, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार दीन को तो ना इस्तेमाल करो, फिर अपना दीन आप अपने पास छुप के अल्लाह के साथ करो, इसका चर्चा ना करो ऐसे, चर्चा वो करते हुए अच्छे लगते हैं जो माशरा सुलझा हो, जिसमें कोई हलाकियात हो, जिस माशरे में हलाकियात नहीं वो अपने दीन का क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि उसने तो अपने आप से शुरू करना है, मैं कैसे चर्चा करूं अपने दीन का, मारे मारे मारे मुल्क में चले ले लेते हैं, कोई हलाकियत ही नहीं है, बेहयाई उधर उरूज पर, उस पर बात करेंगे तो हंसेंगे आगे से। ये तो यार आप क्या बात कर रहे हैं शाह साहब, यहाँ तो ये तो आम हो गई है चीजें यहाँ पर।
1: आप मुफ्ती कवि कितने देखे हुए हैं पाकिस्तान में?
0: क्या अब मैं क्या बात करूं इनके ऊपर,
1: ये देखिए मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, शायद ये देखे ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए ना, ये अब सवाल करते हैं, जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ को देख रहे हैं तो सवाल करते रहे, मुनाफ़त की बात करते हैं, आपने लिखा हुआ है कि मुनाफ़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं और छुपा के नहीं कर रहे। आप देखें ना मुनाफ़त क्या होता है, कई दफ़ा हमने इस पर जो है प्रोग्राम किए, कई दफ़ा उलमा ने इस पर बात की, अल्लाह ताला कहता है कि जो मैं मुनाफ़त को माफ़ नहीं करूँगा, जो मेरे मुकाबले में खड़ा होता है उसको माफ़, जो मेरे साथ किसी को जोड़ता है मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैं माफ़ कर दूँगा। जन्नत दोज़ख़ किस लिए बनाए, जन्नत दोज़ख़ कोई मजाक तो नहीं है, जन्नत दोज़ख़ बनाए गए इन्हीं वजह से बनाए गए हैं, तो ये सजाएं मिलेंगी। वो कोई बंदे कहते हैं जी बस एक बार पढ़ने से 10 हज का सवाब हो जाता है, फिर हज का सवाब पढ़ने का हो जाता है तो खाना काबा में क्यों जाते हैं, आज उधर हज करने के लिए क्यों मक्का मदीना जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें
0: मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो।
1: जी जी,
0: एक तो ये चीजें है ना, अगर आप मेरी अगर लोग दोस्त यहाँ पर जो सुन रहे हैं सामीन वो इसको समझेंगे, आप भी समझेंगे, एक तो हमारे में ये बहुत ज्यादा है, एक इसको मुनाफ़िकत ही कह लें, तल्लुकात की बेस पर यानी कि तल्लुकात बनाते हैं, या यानी कि यार आपको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन पता है आपको सच क्या है, लेकिन आप तल्लुकात की बेस पर आप वो सच को जो छुपा रहे हैं, यानी कि उसे मुंह फेर रहे हैं, यानी कि मैंने ये पढ़ा था, अगर गलत ना हो जाए क्योंकि मैं ये कोड यहाँ गलत नहीं करना चाहता, किसी हदीस में पढ़ा था कि किसी सहाबा ने फलां मैं यहाँ गलत ना हो जाए क्योंकि मैं मेरे पास माफिस में नहीं हूँ, मैं देख नहीं सकता, पूछा कि आपके पीछे तो आप अकेले रह गए हैं, उधर तो हजार बंदा खड़ा है। उसने कहा अल्लाह ताला के अकामत के खिलाफ अगर हजार बंदा भी हो जाए मैं अकेला रह जाऊं तो मैं सच के साथ ही खड़ा होऊंगा। ऐसे ही है ये लोग पता क्या करते हैं, वो यार उधर तो तलुका दी कोई नहीं, उधर तो जानते ही कोई नहीं, ये साढ़े नाल भी हजार बंदा है, 100 बंदा है, 200 बंदा खलोता था, ऐसे बात करते हैं ये ऐसे ही हम लोग हो गए हुए, यानी कि तलुकात की बेस पर एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो गलती सही है चाहे मैं गलत हूं। आपको पता है कि
1: आपको पढ़ते रहते हैं सारी चीजें, आपको पता है
0: आपको पता है कि जो जो बंदा कोई भी हो दुनिया में, आपने तारीख पढ़ी है, जो सच की बात कर बात करेगा उसके उसके उसके दुश्मन होंगे सिर्फ, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना उसके दोस्त होंगे, यही अल्लाह ताला को पसंद है।
1: आप देखें जब बात की जाती है ना कि सारी दुनिया में आप देख लें कि बाज जगह आपको पता है कि गुलाम खरीदे जाते थे, मंडियां लगती थी, उनकी कीमत दी जाती थी, ठीक है, गुलामों में भी किस्में होती थी कितनी कीमत का गुलाम है कितने में, और दूसरा गुलाम दूसरे को बेहतर मिलते थे, मालिक गुलाम को बेच देता था, ये हमने सब पढ़ा। लेकिन हम 2026 में रह रहे हैं, यहाँ भी गुलाम बिकते हैं, सियासी गुलाम।
0: देख लें आप,
1: 2026 तरीका होता है ना, यहाँ भी हम यहाँ की बात करते हैं डेनमार्क की, इनका तो आइन है कानून है, हमें इत्राम करना चाहिए, ये कानून के अंदर रहते हैं कानून के नीचे रहते हैं, इक्वल राइट्स की ये हमायत करते हैं, शादी की इजाजत है, तो क्या मुसलमान खरीदते नहीं है जाकर, उनके गलों में हार नहीं डालते?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की आपने,
1: तो ये बहुत सारी चीजें हम रियलिटी से पीछे हट जाते हैं, हम अपनी तसल्ली करने के लिए, भाई यहाँ का कानून है, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका आइन में इसको जो है उस पर लिखा हुआ है, तो हमें क्या कि जिस मुल्क के हम किसी के मुल्क के आइन की मुखालफत कर सकते हैं, रहते हैं हम ये डेनमार्क में, सियासत हम पता नहीं कहाँ की कर रहे होते हैं, आप बंदे हमारे यहाँ हार जाते हैं, जो आप मैं भी वो जो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कहता रहता हूँ, बहुत सारे आलम बन जाते हैं, सियासी आलम बन जाते हैं, हम एक दूसरे के पीछे बैठे हुए गाली निकाल रहे होते हैं, और मुझे कितने लोगों ने सबूत दिए, मुझे शर्म आती है, वो सुन के भी शर्म आती है, यार ऐसे भी लोग हैं। फिर जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो अब मेरा यकीन हो गया कि ये बीमारी एक किस्म की जहनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, या जहनी मरीज एक बीमारी नहीं होती, ये बहुत सारी बीमारियाँ, ये ठीक ही नहीं हो सकती। जो आपका दोस्त आपके पीछे बैठे आपको गाली निकाल रहा है, वो आपका दोस्त अब बीमार आदमी है वो।
0: देख लें फिर राजा साहब क्या चल रहा है, अब आपने खुद ही इसकी सारी तशरीह कर दी है, तो मैं
1: शायद आप इजाजत लेते हैं, आप भी मुझे पता है मौजूद हैं, आप ऑफिस में मौजूद नहीं,
0: नहीं आप कोई नहीं, आप कोई नहीं बात करें, मैं कोई ये भी नहीं अब कह सकता कि इनको हदायत दे, कितनी बार कहूंगा या कितनी बार कहेंगे हम आपस में एक दूसरे को, हमें हदायत दे सबको, हदायत तो अल्लाह ताला ने, तो मुझे लगता है आपको पता है मेरे ये पढ़ा हुआ है कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाने एक दिन अचानक ही, तो मुझे तो लगता है कि इधर तो तौबा के दरवाजे पहले ही बंद हो गए हुए हैं इधर हमारे ऊपर, इस कौम के ऊपर, कि तौबा ही कोई नहीं, कोई दुआ ही नहीं कबूल हो रही, बता दें कोई दुआ कबूल हुई हो, दुआएं करते हैं ना सारे, हमारी माँ बहने बेटियां सब कर रही हैं, मुल्क के ऊपर भी कर रही हैं, सब के ऊपर, कि हमारा कोई परेशाने हाल नहीं है, कोई वो कोई दुआ कबूल हो रही है, मुझे ही लगता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे, अल्लाह ताला नाराज है बड़ा सख्त, अकल भी तो काम करती है ना, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने उर्दू के साथ इंग्लिश के साथ, उसको तो बार बार पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, उसमें अल्लाह ताला ने यही चीजें फरमाई हुई हैं कि मैं मेहरबान हूं नहायत, अपने इंसान के ऊपर बहुत मेहरबान है अल्लाह ताला, बहुत प्यार करने वाला है इंसान को, तो अल्लाह ताला ही ये कहता है कि उसको हो जाता है कि मैं अपने इंसान को कोई ना पहुंचाऊं, चाहे वो जितना मर्जी जालिम भी हो, कर देता है, शिर्क नहीं माफ करता अल्लाह ताला किसी को जो उसके अगेंस्ट हो आ जाए कि मैं खुदा हूं। और दूसरी बात ये अय्यारी मकारी और झूठ और मुनाफ़क़त, तो देख लें आप
1: शायद
0: हम कितने हम कितने हम,
1: कि
0: हम
1: लोगों ने एक अपना बनाया हुआ है ना, अब यहाँ जितने भी मेले हुए हैं जितने भी, और इसमें कामयाबी का राज क्या था, मैंगो फेस्टिवल, उसमें आम लगे हुए हैं, लोग जो है वो जा रहे हैं, ख्वातीन जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं, कहीं सहूलियात ज़्यादा हैं कहीं सहूलियात थोड़ी हैं, जो मैंने एनालाइज़ किया है कि लोग दिनों पे नहीं जाते, लोग स्टालों पे जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें साबित हुई हैं।
0: बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि लोग यहाँ पर कोई छोटी मोटी इंटरटेनमेंट चाहते हैं, इस तरह की इंटरटेनमेंट जो हटके, दूसरी चीजों से हटके, जो की है स्टालों में कर लें। मैंगो फेस्टिवल एक, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान का भी लगता है, पता कि ये पाकिस्तान के आम है, इधर अंग्रेज लोग भी आते हैं, डैनिश भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, मैंने देखे हैं बहुत से लोग, उनको पता लगता है ये पाकिस्तान के आम है, और कईयों को नहीं पता, फिर पता लगता है ये खासकर डैनिश लोगों को आते हैं। और फिर इस तरह आप ए, जो है ना आपकी मशहूरी होती है, इन चीजों को करें हाईलाइट, बजाय कि आप गंदी सियासत करें उसे आप हट जाएं। ये बाकी सबकी अपना अपना है, एक राय है ना मशवरा है ना किसी को,
1: हर आदमी का हक है उसे हक है, जो यहाँ बोलने की आजादी है, कहने की आजादी है, जहाँ कानून ने इजाजत दी है कानून कहता है, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी ख्याल करना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
1: एक बंदा कहता है यार मुझे कानून इजाजत देता है, तो खुद भी कुछ चीजें होती है ना, खुद भी बंदा कह लगता है यार मैं किसी के दीन की बात गलत ना करूं, उसका दिल हार्ट होगा, तो ये बंदा खुद भी कह सकता है। अब कानून में यहाँ बहुत सारी चीजों की इजाजत है, लेकिन ये तो नहीं आपने सब कुछ वही करना है।
0: यहाँ पर मैं ये बात कहते चलूं, आपने चले ये बात कर ही दी है, किसी के दीन के बारे में खास कर हमें ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पहले खुद अपने दीन के मुताबिक चल लें। जो जो हकामत आपके रब ने और आपके रसूल ने दिए हैं उसके ऊपर आप पूरी तरह पहले अमल कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हो सकता है। आप किसी के दीन के ऊपर, और वैसे भी हमें किसी हमारे दीन ने ये सिखाया कि आप किसी के दीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म का ये नहीं लगा सकते कि आप ये करें। और जिन मुल्क ममालिक में आप हम रह रहे हैं, डेनमार्क स्वीडन में, हम यहाँ पर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं हम यहाँ पर आए हैं, जब फिर हमने इनके ममालिक के कवानीन का एहतराम करना, ये हमारे दीन में भी है, ये और दीनों में भी है, लेकिन हमारे दीन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दीन में भी है। आप यहाँ पर जबरदस्ती कोई चीज मसला नहीं, कानून को आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा हैं लोग शिद्दत पसंदी जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। ये ऐसी है कि जब आप अपने मुल्कों में जाते हैं तो आपके साथ वहां क्या होता है, शिद्दत पसंदी करते हैं तो क्या करते हैं आपको,
1: पता नहीं बात
0: नंगा करके लटका के मारते हैं आपको। इधर जब
1: बात में करने लगा हूं कि सारी सियासी जमातों का मंशूर होता है, क्या सारी जमातें अपने मंशूर पर अमल करती हैं जो उन्होंने खुद मंशूर बनाया होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था वो मंशूर ही था ना, और क्या था?
0: बिल्कुल
1: ठीक है, वो मंशूर था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर पर हम अमल करते हैं?
0: बिल्कुल नहीं,
1: कोड हम करते हैं। इसी तरह ये जो होता है ना, जब तक आप अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको दीनी लिहाज से जाते हैं, उस मंशूर पर अमल नहीं करते, हमारा तो किसी बंदे से गिला बनता ही नहीं है।
0: नहीं, हम उस मंशूर को कोड करते हैं या उसको अमल नहीं करते, कोड करके लोगों को बताते हैं जिसमें उसने कोई अपना मफाद हासिल करना हो, ये भी बताएं।
1: सही बात। तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑफिस से बाहर हैं, आपने कीमती टाइम दिया, मुझे पता है काम करने वाले का बंदा कितना कीमती टाइम होता है, छुट्टी का दिन है, तो ये छुट्टी के जो दिन होते हैं हमने 35-36-40 साल के करीब जो है अपनी आवाम के लिए दिए हैं। आज आपका भी छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी छुट्टी है, वो तो गाड़ियों में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए सुन रहे, वो तो बड़े इन्जॉय करते हैं। मैं भी जब बैठता हूँ कभी गाड़ी में, कभी दोस्तों के पास, तो जब कोई प्रोग्राम लगा हो तो मैं भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ।
0: राजा साहब, मैंने चले थोड़ी मजाकन बात भी कर लें, मैंने तो आपको छुट्टी पर ही देखा है 25।
1: आप तो देख लेना, जो कहते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है, जो मजाक की तरफ हम जब मजाक पे आते हैं, हाँ। जिन लोगों ने काम किया होता है उन्होंने किया होता है, किसी ने भी किया, अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है लेकिन उसने जिंदगी में कोई काम किया हो, तो उस काम की तो बंदा जो कहता है यार इसने किया हो, बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसने काम तो किया हो, ये एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, गीबत की तरफ चले जाते हैं, मुनाफ़त की तरफ चले जाते हैं।
0: जैसे अगर कल को फर्ज करें मुझे कोई शील्ड मिल गई है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं कोई छोड़ेगा, इसको शील्ड क्यों मिली है। ये है इधर जो कौमे ना, ये इधर की जो है जाम रहते हैं,
1: चंद लोग होते हैं, देखे ना, कहते होते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या मछली तालाब गंदा कर सकती है? نہیں مچھلی تو نہیں مچھلی نہیں تالاب گندا کر سکتی, وہ کہتے ہیں ایک مچھلی اس کی وضاحت ہے. اسی طرح چند لوگ ہوتے ہیں جو ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں. ہر انسان کو اپنی خوبی کا بھی پتہ ہے, خامی کا بھی پتہ ہے, دوستی کا بھی پتہ ہے اور دوستی نہ ہونے کا بھی پتہ ہوتا ہے, منافقت کا بھی پتہ ہے. لیکن یہ چند لوگ ہوتے ہیں, شاید اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں, بہت یہاں سادے لوگ ہیں, بڑے سمپل لوگ ہیں. یہ بچے بڑے معصوم ہیں, ان کی تختیوں, یہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس تختی پر کچھ نہیں لکھا ہوتا, یہ ہم ان کی تختی پر لکھتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو خراب کر دیتے ہیں. بچے جو یہاں پیدا, بچہ کون پیدا ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. آپ اذان دیتے ہیں, اگر مسلمان پیدا ہوئے تو اذان کیوں دیتے ہیں آپ؟ اچھا اذان دی جاتی ہے. اسی طرح کرسچن ہیں وہ اس کو اپنے نظام سے کرتے ہیں, دوسرے مذاہب ہیں وہ اپنے نظام سے کرتے ہیں. تو میں تو سب مذاہب کی جو ہے عزت کرتا ہوں شاید.
0: جی, اور یہی ایسے ہی کرنا چاہیے یہاں پر رہ کے. اب آپ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی تو پھر یہی ہے, آپ کو ڈینش کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر آپ نہیں ان کے قانون کے مطابق چلنا چاہتے, سعودی عرب میں چلتے ہیں نا ان کے قانون کے مطابق, وہاں کتنی سخت سزائیں ہیں, وہاں تو آپ چپ کر کے سر جھکا کے چلتے ہیں. جو ادھر لوگ جو کام کر رہے ہیں, انڈین, پاکستانی, بنگالی, جو بھی ہیں جو قومیں وہاں کام کر رہی ہیں, تو ادھر آپ کیوں جو ہے ان کی وائلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں, جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ کرتے ہیں اور انہیں کے اوپر یہ انہوں نے شکنجا جو ہے نا ٹائٹ کیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں ادھر, اور مزید جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہاں پر جو غیر ملکی ہیں, چاہے کوئی بھی ہے. آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا,
1: شاید جو نئے قانون آ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
0: تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ.
1: سامع ناظرین, یہ تھے شاید نسیم جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے. سامعین, ہماری بات جو ہوتی ہے صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے, ہمارا کسی سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں, آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ابھی بات کر سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत है, जो जानी पहचानी है, इनका तारफ की ज़रूरत भी नहीं है, ये बुज़ुर्ग जो है सीनियर साफ़ी है, मेरी मुराद है जनाब असलम मेहर साहब। आजी साहब, एक बार फिर आपको अपने ही अदारे पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: शुक्रिया जनाब राजा कपूर अफजल साहब, रेडियो आपकी आवाज़ अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, हिम्मत है, वक़्त है, टाइम है, लोगों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन मुहैया करने के लिए, हम तो इसको एक कम्युनिटी की खिदमत, पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखने के लिए अपना हिस्सा डाल देते हैं। आप तो मुतवातर सुबह से शाम तक रेडियो के लिए बेहतरीन और काफ़ी वक़्त देकर लोगों के लिए मालूमात मुहैया कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ जी कि हम जुमे वाले दिन अपने राशिद अली साहब ने पूरी जो उर्दू की मीडिया टीम है उन्हें मधु किया था। वहाँ पर हमारे आसफ साहिल राजपूत थे, जावेद अली थे, असलम मेहर थे, गोंदल साहब थे और जनाब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नौजवान सियासतदान बड़े ही हम्बलफुल, हर लफ्ज में उन्होंने अपनी खिताब में यही फरमाया कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो एक आजिज इंसान हूँ, अपने वालिद के बताए हुए तरीकों पर सियासत करता हूँ और पाकिस्तानी अवाम के लिए कवानीन में अगर सख्तियाँ हैं तो वो भी बताता हूँ, अच्छाइयाँ हैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। मैं डेनमार्क में पैदा हुआ हूँ और डेनमार्क में हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, तालीम ले रहे हैं, आला आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों दफा कहा कि मेरे अंदर कोई अकड़ बकड़ या कोई ऐसी चीज नहीं, मैं आज भी से जिंदगी गुजार रहा हूँ और आखिरी दम तक अपने माँ बाप की हदायत के मुताबिक आज भी से ही जिंदगी गुजारूंगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद आसफ साहिल राजपूत साहब ने अपने खिताब में बहुत अच्छी बात की। वो अपने दूसरे ग्रुप की अगर को भी वो बात करते हैं जो नून से मुंसलिक हैं, उनको भी इज्जत और तकरीम के साथ बुलाते हैं, उनका भी वो नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से। शौके साहब ने भी ये बात की कि भी दो ग्रुप हैं लेकिन दोनों ग्रुप जो हैं मौजूदा हुकूमत के हिमायती हैं, उनके जियाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके लिए अपना वक्त लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, टेलीफोन करते हैं, हमें बुलाते हैं, राजा गफूर साहब को बुलाते हैं और दीगर दोस्तों को बुलाकर इस जुमे को बहुत ही अच्छी जबरदस्त दावत का एहतमाम राशिद अली साहब ने किया था और मखसूस दोस्तों को बुलाया था। ये अपने जो यहाँ पर वेल्बी में अपने कोलंबिया है, कोलंबिया रेस्टोरेंट, उनका
1: वो तो एक होटल की शक्ल इख्तियार कर गया, काफी बड़ा अदारा बन गया कोलंबिया।
2: हाँ जी, को इसकी ब्रांचें खुल गई हैं जगह जगह, बहुत ज्यादा 5-6 आदमी हर वक्त इनकी किचन में काम करते रहते हैं। उन्होंने कोलंबिया वालों ने, आप यकीन जाने कि इतना अच्छा खाना, मटन मछली, बात ये नहीं कर रहे कि मटन मछली की, नफासत थी, सफाई थी, अदब था, अपने मेहमानों का वो इतना ख्याल करते हैं यार के जैसे घर के मेहमान है, रेस्टोरेंट के मेहमान नहीं है। बार बार आकर पूछ रहे थे, हर चीज वहां पर टेबल पर खाने इतने थे कि जगह नहीं रही रखने के लिए, कितना खाएगा आदमी। बात तो यह है कि राशिद अली साहब ने दिल खोल कर अपने मेहमानों को कह रखा था कि आपने जो कुछ मंगाना है आप बोले वो हाजिर होगा। तो राशिद अली साहब ने वहां पर आपके एजाज में और सिकंदर के एजाज में उनको जो तमगा इम्तियाज मिला है, आपको अम्बेसडर साहब शेब सरवर साहब ने खसूसी तौर पर जिक्र किया है इस बात का कि आप हर साल कायद आजम की सालगिरह के मौका पर तमाम रहनुमाओं को बुलाते हैं। लास्ट टाइम पे जब आपने तकरीब की थी यहाँ पर और सब लोग जो हैं अपनी अपनी सोसाइटियाँ या कदावर रहनुमा, सियासी, दीनी, अदबी, कारोबारी, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैंने इस चीज को नोट किया है कि ये सब लोग जो हैं वो हैं जो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो मैंने इस चीज को एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल से मैं मुतवातर देख रहा हूँ कि इससे पहले भी राजा गफूर अफजल ये तकरीब 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं और बिला तफरीक सब लोगों को दावत देते हैं और बोलने का मौका देते हैं। तो ये खसूसी शील्ड इसलिए आपको दी गई। तो बाकी जनाब कल अपने सिकंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साबक, उन्होंने तमगाए इम्तियाज के बारे में एक घंटा पूरी तफसील से ये बताया कि ये ऐसे नहीं मिल जाता, इसके लिए बहुत काम, रिपोर्टें चारों तरफ से ली जाती हैं, हर तरफ से पूछा जाता है और एक लिस्ट बनाई जाती है उस मुल्क के अंदर कि अगर 10 आदमी भी हैं तो कुछ लोग शॉर्ट आउट करते करते करते करते फिर जब ज्यूरी जो है वो वोट देती है, वो अपनी राय देती है, उसके कारनामों को वो पढ़ रहे होते हैं टेबल के ऊपर बैठकर, उनके सामने उस शख्स की पूरी बायोडाटा होती है, उसका उठना बैठना खाना पीना, मुल्क के लिए क्या किया, उसने दंगे किए हैं या के काम किया है, क्या किया है, वो हर चीज उसकी पूरी वहां पर लिखी हुई होती है कि जिस दिन से उसने पाकिस्तान डेनमार्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी है। तो फिर वोटिंग होती है और डेमोक्रेसी है और जमहूरियत है, इसी चीज को मद्देनजर रख के सिकंदर मलक सदीक को तमगा इम्तियाज दिया गया है। तो ये तमगा इम्तियाज हर आदमी को नहीं मिलता। आप देखें हमारी जो तारीख है, हम 56 या 60 साल से यहाँ पाकिस्तानी आए, मजदूर की हैसियत से आए, काम किया वतन के लिए, इन्होंने जो कुछ हो सका अपनी मेहनत की, पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया। ये वाहिद शख्स है पहला हमारे में से जो हम में पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ, इसको तमगा इम्तियाज। गुलाम साबर को जो मिला था उन्होंने अलामा इकबाल के ऊपर, अलामा इकबाल शायर मशरक कायद आजम के साथी थे, इस सिकंदर मलक ने नौजवानों के लिए काम किया, हमारे लिए काम किया है। यार वो बार बार यही कह रहा था कि मेरे अंदर कोई ऐसी प्राउडनेस नहीं, मैं तो एक आजिज इंसान हूँ, आप में से हूँ। जब भी मैं कोई चीज देखता हूँ कि कवानीन बनते हैं, मैं उसके ऊपर आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूँ। मैंने कहा सिकंदर मलक मुझे ये तो बताएं, क्योंकि मैं डैनिश अखबार रेगुलरली नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आलमी मीडिया जो उर्दू का है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से हो, कनाडा से हो, अमेरिका से हो, बीबीसी हो, डोच ऑफ वॉइस ऑफ डोच हो, जर्मनी हो, मैं उर्दू मीडिया वहां तक पढ़ता हूँ कि ये प्रिंट कहाँ से होकर निकला है, उस वो जो प्रेस है उसका नाम भी पढ़ लेता हूँ कि ये किस दफ्तर से ये खबर आ रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिकंदर मलक ने ना दिन देखा ना रात देखी, तो उनको जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर यह तमगा दिया है, ये हर आदमी को नहीं मिलता। यहां मैं ऐसे मिसाल दूंगा कि अब्दुल सत्तार ईदी मेरा आइडियल है कायद आजम के बाद। आप देखें कि सारी जिंदगी एक कुर्ता एक पजामा और हवाई चप्पल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर उसका नाम गूंज रहा है ना, गूंज रहा है। क्या कभी तीनों अफवाज के सरबराह किसी ऐसी शख्सियत के जनाजे में शामिल हुए थे? फिजाइया, बर्री, बहरी, तीनों अफवाज के जर्री, बहादुर, सिपा सालार, ये हवाओं के मुसाफिर, ये समंदरों के राही, ये सब जो हैं अब्दुल सत्तार ईदी के जनाजे में नमाज जनाजा में शिरकत की है और ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। इसी तरह एक मजदूर का बेटा, मैं भी मजदूर आया, सिकंदर का वालिद भी एक मजदूर आया था, उसके बेटे ने कम्युनिटी की खिदमत की है, आवाज उठाई है। और मैंने कहा सिकंदर आप कालम लिखते हैं, ये तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता दो चार कालम लिखे होंगे, पांच लिखे। कहता नहीं अंकल, 100 कालम लिखे हैं मैंने, और जब 100 कालम अखबारात में कंप्लीट हुए उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई की कि आप आवाज उठाते हैं, 100 कालम कह देते हैं राजा गफूर अफजल, क्या मामूली बात है? हम घर बैठकर किसी को कह देते हैं ये अच्छा है, कहना चाहिए, बुरी बात नहीं। हमने अपने सफीर जो यहाँ पर आते हैं, क्या कहते हैं, मशीर आते हैं, वजीर आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन डैनिश मीडिया के अंदर میری جہاں تک معلومات ہے کسی اور آدمی نے سکندر ملک کے علاوہ کوئی 100 کالم نہیں لکھا, وہ بدستور لکھ رہا ہے. اور پھر بار بار سر جھکا کے کہتا تھا کہ یہ اردو میڈیا بیٹھا ہوا ہے, میں آپ کے سامنے آپ کا عاجز بھائی ہوں, عاجز بھائی ہوں. اس میں اس کے چہرے کے تاثرات بھی پڑ رہا تھا یار. میں کبھی ان کو کہہ بھی دوں نا کوئی ایسی بات جو مطلب ہے کہ ناگوار ہو, پھر بھی کہتا ہے آپ میرے انکل ہیں, آپ میرے انکل ہیں. گاڑی سے اتر کر ایک دفعہ میں یہاں یقین دانوں اپنے گھر کے پاس جو ہے ٹریفک اشارے پہ کھڑا تھا, سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے اترا, مجھے سینے سے لگایا, سلام کیا. یہ ہے بڑا پن. تو کوئی ایسے تو نہیں تگمہ مل جاتا پاکستان سے. تگمہ جو ہے یہ ایک پہچان ہے اس کی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اسی طرح پوری پاکستانی کمیونٹی کی, ہر آدمی کی جو بھی مسئلہ ہوا. اور دوسرے نمبر پہ اس وقت بخاری صاحب جا رہے ہیں, میری دعا ہے کہ ایک وقت آئے اجاز بخاری صاحب کو بھی حکومت پاکستان ریکگنائز کرے اور ان کو بھی تغمہ دے, کیونکہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو شعیب صاحب کو اللہ خوش رکھے, آباد رکھے. چھوٹے چھوٹے میرے پاس 7 سال کی بچی کی تصویر ہے, میں دکھا سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ ہم کہاں دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ کر مینگو فیسٹیول میں ہاتھ ملا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, اور شعیب سرور صاحب کو بڑے محبت سے دیکھ رہے ہیں. تو میں بھی ماں کا ہاتھ چھڑا کر نہ بھاگ کر سفیر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو میری ماں نے میری تصویر اتار لی. یار ایسے امبیسٹر جو ہیں نا, یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, یہ ہیں امبیسٹر. ہمیں تو یہاں بہت سارے امبیسٹر آئے کہہ دیا جی کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور ریڑھ کی ہڈی بن کے دکھاؤ, کام کر کے دکھاؤ, ملک کا نام اونچا کرو. دوسری بات اب میں کہہ کے اجازت لوں گا کہ آپ دیکھ لیں کتنے سفرا آئے یہاں پر پاکستان میں, جو ڈنمارک کی ڈینش سفیر ہیں, خاتون ہیں, معزز ہیں, احترام ہے, محترمہ ہیں. تو وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ امبیسٹر ہے. جب انہوں نے اناؤنس کیا, یہ سامنے جو خاتون صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی, کہ یہ پاکستان اسلام آباد میں ڈنمارک کی سفیر ہے, تو تعلقات بنانا, ملک کی عزت میں اضافہ کرنا, حلالی پرچم کو لہرانا, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں, جنہوں نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے ایک مزدور کی طرح کام کر کے دکھایا ہو. کام چمکتا ہے, آدمی کا نام نہیں, اس کا کام چمکتا ہے.
1: مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو انالائز کیا. تو مہر صاحب مبارکباد دیتے ہیں کہ احمد فاروق صاحب جو سابقہ سفیر تھے ڈنمارک تشریف لائے ہوئے تھے, کل پیاں منیر صاحب نے ہمیں ایک تصویر شیئر کی, دیکھ کر جو ہے بڑی خوشی ہوئی. اور ایک تصویر بھی تھی جس میں میاں صاحب اور نصر ملک صاحب اور احمد فاروق صاحب بھی تھے, وہ بڑی اچھی تصویر تھی, بڑی پیاری تصویر تھی. میاں صاحب کی ہے اور احمد فاروق صاحب کی بھی بڑی جو ہے وہ تصویر تھی. تو مہر صاحب ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی.
2: عمران محبوب صاحب کی بھی تصویر مجھے میاں صاحب نے براہ راست بھیج دیا تصویریں. میاں صاحب بہت ایکٹیو ہیں, سوشل ہیں. اور
1: چلے میں یہ دیکھیں نا, یہ ایک اچھی چیزوں کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے, اچھی چیزوں کو جو ہے سراہنا چاہیے. تو نصر ملک بھی اسی کمیونٹی کا حصہ, اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, وہ بھی ڈینش شہری ہیں اور بات کرتے ہیں, تو ان کا بھی حق ہے. لیکن تصویر جو میاں صاحب کی اور احمد فاروق صاحب کی, نصر صاحب کی, بہت ہی خوبصورت ہے.
2: ہاں جی, عمران محبوب بھی ساتھ ہیں, ایک تصویر,
1: وہ بھی بڑی تاریخی تصویر ہے, دونوں تاریخی تصویریں ہیں.
2: میں اب آپ نے نصر ملک صاحب کا نام لیا ہے تو آپ سن لیں کہ میں حقیقت بیان کرنے سے کبھی بھی گھبرایا نہیں, اور نہ ہی یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا. لبنہ الہی نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا, انکل ہم نے جو کام کرنا تھا کر لیا, نہ کوئی ہمیں چھوٹا کر سکتا ہے, آپ کو بھی مجھے بھی لبنہ کو نہ کوئی اونچا کر سکتا ہے, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب نصر ملک کی بات سن لیں. نصر ملک صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یہ جب ریڈیو ڈنمارک پہ کام کرتے تھے, میں ان کے پاس میرا خیال ہے 20 مرتبہ گیا ہوں. میں جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ یہ جنگ اخبار خریدتے ہیں اور سرخ سیاہی سے اس کو انڈر لائن کر لیتے تھے کہ جس کو خبر اپنے انداز سے یہ بناتے تھے, اور اچھی خبر بناتے تھے. पहला यही उर्दू का एक अदारा था, अब तो जगह जगह के ऊपर हमारे हाथ में, अब यह जो मैं बात कर रहा हूँ मैं टेलीविजन हाथ में पकड़ कर आपसे बात कर रहा हूँ, तस्वीर जो नजर आती है और पूरी दुनिया सुन रही है जी, पूरा यूरोप यूरोपीय यूनियन सुन रहा है, ये बातें सारी हो रही हैं। तो नसर मलक को मैंने बैठ कर देख कर काम करते हुए जब देखा तो जनाबे वाली इनके टेबल के ऊपर एक कप भी पड़ा हुआ था। मेरा मुशाहिदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो अंदर से काला बाहर से सफेद था। काफी पीते थे, लिखते थे, काटते थे फिर लिखते थे। तो खबर बनाने का ढंग जो है मैंने नसर मलक से सीखा। और एक मर्तबा एक जगह पे हम बैठे थे तो नसर मलक ने मेरी उर्दू चेक करनी थी। इन्होंने 22 सफात लिखाए, शायद मुझे शक पड़ रहा है कि आप भी साथ थे शायद। 22 सफात ये बोलते गए, मैं लिखता रहा। तो फिर इन्हें यकीन आ गया कि मैं उर्दू में मुश्किल से मुश्किल अल्फाज भी लिख सकता हूँ। मेरे इस हवाले से नसर मलक उस्ताद हैं और ये पाकिस्तान में सहाफी थे। जब यहाँ वली खान आए कोहनूर में, काकर अयूब साहब ने उनके एजाज में, सागा सैनमा खत्म हो गया, वहां लीडल मार्केट बन गई है खाने पीने की, तो वहां पर नसर मलक की मुलाकात, और मैं भी था और भी लोग थे, अयूब काकर भी थे। तो उन्होंने वली
1: हाजी साहब जरा मैं दुरुस्त कर दूं, वो कोहनूर में नहीं आए थे, वो शेख साहब जो नदीम का रेस्टोरेंट था उसमें आए थे।
2: वहां भी थे, कोहनूर में भी आए थे, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ,
1: क्योंकि आपके पास नॉलेज ज्यादा है,
2: क्योंकि वो वहां भी आए थे। और ये शायद आपके आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास उनके इंटरव्यू की कॉपी थी जो इन्होंने दिखाई उनको, और उन्होंने कहा कि वाकई मैंने आपको पाकिस्तान में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उनको तो अयूब काकर साहब ने वो अपनी
1: चले आई सब, चूंकि आप तजुर्बाकार हैं माशाल्लाह, आपके पास बड़ा नॉलेज है, आपके पास पूरी वो कहते हैं बक्से भरे हुए हैं, जो सबूतों के बक्से भरे हुए हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आज साहब।
2: और इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, नसर मलक ने बाकायदा रिकॉर्डिंग की, और मैंने वो खबर जो है खुद अपने तौर पर, क्योंकि मेरा उस्ताद है खबर बनाना लिखना, उसका बैलेंस करना,
1: नहीं सब उस्ताद का इत्राम करना चाहिए, यही हमें सिखाया गया है।
2: तो वही तहफ्फुज़ात हो सकते हैं अपने अपने, और एक बात वो ये भी कहते हैं तुम्हारा दीन तुम्हें कबूल, मेरा दीन मुझे कबूल। मैं भी उन्हें कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कोई ऐसी नाराजगी की बात नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ पर डैनशों से तालीम नहीं लेते, आपके बच्चे नहीं लेते, औरों के बच्चे नहीं लेते, उनका दीन उनको कबूल, मेरा दीन मुझे कबूल। क्या मेरे बच्चे जिन्होंने मास्टर किया है, जिन्होंने अच्छी नौकरियां ली हैं, जिन्होंने इंपीरियल सेना में मुझे दावत मिली थी कि मियाँ माँ बाप तुम्हारे आ सकते हैं जब तुम्हें हम सनद देंगे, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने सनद दी है मेरी बेटी को, मैं जब वहां पे गया तो उनको पढ़ाने वाले जो हैं वो लाला मूसा के प्रोफेसर नहीं थे, डेनमार्क के।

0: वहां पर भी मालमो में भी, क्योंकि मालमो के पास भी दोहरी शरीयत है पाकिस्तानियों के पास जो है ना, वो भी वोट दे सकते हैं, यहाँ भी रहते हैं मालमो में भी रहते हैं। तो अजी साहब दूसरी ये बात है कि एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम कहते हैं तो हम तो इस मुल्क में रहते हैं, स्वीडन या स्कैंडिनेविया के जो ममालिक हैं वहाँ तो सारे इस मुल्क में रहते हैं, इस कानून कायदे के अंदर रहते हैं, कोई सुन्नी है, कोई वाबी है, कोई शिया है, कोई मरजई है, तो इसमें अजी साहब यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है इस तरह का।
1: नहीं देखें, इन्होंने दो मस्जिदें बाकायदा जमीन से उठाकर अहले तौशी के लिए, आर निवाए मेरे ब्रो नसर अपने नासर फूड स्टोर के पास से गली जाती है, क्या वो मस्जिद बिल्ट करके नई बनाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं दिया आपको अहले तौशी को? और एनवी में कतर ने 120 मिलियन डैनिश क्राउन, मेरा ख्याल है अब सही पता नहीं, 120 मिलियन जो है उन्होंने कतर ने खर्च करके आपको बेहतरीन मस्जिद एनवी में, एनवी नहरे ब्रोस में बना के नहीं दी। मालमो के अंदर भी मैं वहां जुमा पढ़ के आया हूँ, वहां जनाब रोजन गॉड में पता नहीं कितने मिलियन क्रोन लेकर उन्होंने जमीन का किता खरीदा और उसके ऊपर स्वीडिश फर्म कंपनी ने बनाने वाले इंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन फर्म, इतनी प्यारी मस्जिद बनाई है कि जब दूर बैठा कोई आलम खिताब कर रहा तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे कान में जो है ना वो हेडफोन लगा हुआ है और मैं सुन रहा हूँ। इतनी प्यारी मस्जिद, वहां सैकड़ों मेरा ख्याल हजार आदमी आसानी से, तो ये इन्होंने सहूलत दी है मुझे जो मैं अपनी जिंदगी।
0: हाजी साहब ये देखे ना, वहाँ जो है वो कादियानियों की इबादतगाह बनी हुई है, वो बहुत भी बड़ी खूबसूरत है। हाजी साहब यहाँ कानून का एहतराम किया जाता है,
1: कानून का एहतराम इस तरह किया जाता है कि उससे पहले आप अगर मोटरवे से आ रहे हैं वहां पर, तो हर दफा जब मैं गाड़ी पे जाता हूँ अपने बेटे के साथ अपने दामाद के साथ, तो वो जो है बिल्कुल मोटरवे के पास नीचे खुले बड़ी खुली जगह जमीन जैसे फुटबॉल की होती है तो तुर्कों ने बनाई हुई है, तुर्कियों ने बनाई हुई है मस्जिद, और कार पार्किंग की सहूलत है बेतहाशा। बस मैंने एक चीज नोट करी है कि आप अपनी इबादत करें, आप तशद्दुद ना करें, आप यहाँ पर कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, किसी को धमकी ना दें, और अपने घर बुलाकर धोखे से दावत में बुलाकर उसको माँ बहन की नंगी गालियां ना दें। अगर ऐसा काम करते हुए आप पकड़े गए और आपके पास सबूत है तो सीधे कानून ने पकड़ कर कान से जेल में ठोंस देना आपको।
0: हाँ जी साहब, अब कानून जो है बहुत तब्दील हो चुके हैं, हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, जो भी हम यहाँ रहते हैं यहाँ की डैनिश सियासी जमातों का हिस्सा बनना चाहिए और यहाँ के कानून का एहतराम करना चाहिए। कोई भी आलम दीन हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यहाँ के कानून का एहतराम ना करें, वो भी फरमाते हैं सारे आलम दीन कि यहाँ रहते हैं यहाँ कानून का एहतराम करें, दीनी लिहाज से उसकी वजाहत भी करते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करें।
1: उसकी मिसाल ऐसे है कि जाहिद खान है अपने क्वेटे या पिशावर के, उनके वालद डॉक्टर अब्दुल अजीज यहाँ 40 साल पहले आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जो कोई बात सीखी है तो इन लोगों की महफिल सोबत में बैठकर सीखी है। आप देखें ना कि अगर आग का कोई अंगारा है, भट्टी है, उसके करीब आप बैठेंगे ना तो वो आग अगर आपको जलाती नहीं ना तो उसके अंगारे जो है वो बारीक बारीक उड़कर आपकी कमीज में छेद कर देंगे। अगर आप अतर वाली दुकान के पास बैठे हैं, ना भी खरीदें अतर, लेकिन आपको उस दुकान के दरवाजे या खिड़की से खुशबू मिलेगी। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज यहाँ 40 साल पहले थे, जाहिद खान है उनका नाम।
0: जी साहब आप तीसरा लफ्ज भी कहते होते, आप गंदगी में बैठेंगे तो गंदगी आप पर पड़ेगी।
1: तो वही तो ना, वो मिसाल वो आग वाली दी है ना कि आग जो है वो सुराख कर देगी कमीज आपके अंदर। तो ये चीजें अब खत्म हो रही हैं और हो गई हैं और हो जाएंगी, अब नई नस्ल तीसरी चौथी जवान हो चुकी है। आप बाद औकात कहते हैं ना, अब वजाहत सुन लो कि जी नौजवान बाहर नहीं निकलते, डेमोस्ट्रेशन नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फला नहीं करते। आपने यहाँ पर रोड के ऊपर लड़ाइयां नहीं की, बताएं मुझे, उन्होंने देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं अखबारात में, रेडियो?
0: तो अजी साहब कानून बन गए ना, देखें बच्चे तो ना बच्चे समझ होते हैं, बच्चे सबके बराबर होते हैं।
1: आगे आए आपके बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये बाबे जो हैं लड़ाइयां लेकर आया यहाँ पाकिस्तान में, आए मजदूरी करने थे, आए मजदूरी करने थे,

0: और मैं अक्सर आज भी मेरी बात हुई है किसी से, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने उन्हें कहा है कि अगर यार मैं पाकिस्तान में होता तो मैं अपने बच्चों को उन कॉलेजों, उन यूनिवर्सिटियों में, उन आला तालीमी अदारों में मैं तालीम नहीं दिलवा सकता था जहां जिनका मयार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है। हमारे बच्चों को डेनमार्क ने मुफ्त तालीम दी और जेब में करोड़ डालने हैं कि जाओ जाकर बर्गर भी खाओ, बर्बर भी खाओ, शफाफ पानी भी पियो। तालीम भी दी है, फर्नीचर भी दिया है। मेरे पास एक तस्वीर है गिलगित के अंदर, मेरी छोटी छोटी मासूम बच्चियां बर्फ के मैदान के ऊपर बैठी हुई इम्तिहान दे रही है। मैं तस्वीर दिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे, मेरा शौक ये है कि या तो मैं किचन में अपनी मर्जी की सब्जी फ्रूट जो भी बनानी है क्या खाना है, और दूसरा मैं कीड़ा हूँ, कीड़ा मुझे आप कीड़े हैं हूं तो मैं इंसान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा हूँ, लेकिन मैं मुताले के लिहाज से मैं कीड़ा हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पास बच्चियों की तस्वीर है गिलगित।
1: जी साहब, आप तालीम की कदर करते हैं। देखे ना, जस्टिस रिटायर्ड रमदे साहब, वो भी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जंगल में। वो कहते हैं एक पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी, जब वो मुकम्मल हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वही बच्चे जो है अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। वक्त आएगा, हमारी जिंदगी में आएगा, या वो कोशिश तो कर रहे हैं।
0: आएगा, जरूर आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, बर्फ है बिछी हुई सफेद चादर और बच्चियां सादे कपड़ों में बैठ कर अपना इम्तिहान दे रही है, और वो वहाँ पर क्यों नहीं स्कूल।
1: हाँ जी साहब, आप देखे ना, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है, तालीम आपकी सारी आपको मुफ्त है, अस्पताल में आपको सारी सहूलतें मिलती हैं, जो बादशाह को भी मिलती हैं वो आप मजदूर को भी मिलती हैं। तो अजी साहब, इन चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हम जिन जिन ममालिक से आए वहाँ जाकर ये बातें करनी चाहिए, वहाँ जो अच्छी चीज़ें वहाँ की अच्छी बातें यहाँ भी करनी चाहिए।
0: राजा साहब, उसकी मिसाल ऐसे है, आप कितनी बातें दूं, कितने बताऊं। मुझे ये 30 साल पहले जो घर मिला ना, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, बेटा ये बोर्ड किस लिए लगा हुआ है? कहने लगे, ये बोर्ड लिखा हुआ है कि 8 बजे के बाद यहाँ आप फुटबॉल का जो थप्पा है नीचे फेंक कर उसका शोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे लोग जो है वो आराम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या किसी किताब में मशगूल होते हैं। तो बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, मुझे ये 35 साल हो गए इस घर के अंदर, इस जगह। जो लोग अपने मुल्क की नस्ल को साइंसदान राकेट पर बिठा कर चांद पे भेजना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की नर्सरी को इब्तदा से, शुरू से, बार नहर से ऐसी तरबियत देते हैं। आप सुबह निकले इशारे के पास, टीचर उनका 5 साल के बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, 8-10 बच्चे हैं, तो वो कहता है कि ये लाल रोशनी आपके दिमाग के अंदर ऐसे बैठ जाए कि जैसे कंप्यूटर में बैठती है, आपने नहीं जाना, जब ग्रीन होगी, सबज होगी तो फिर चलना है आपने। वो 4-5 दफा ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। मैं खड़ा होके देखता हूँ, मेरे पास तस्वीरें भी बनी हुई हैं, कि उनको वो उनके दिमाग के अंदर हिफज करा देते हैं कि सुरख बत्ती क्रॉस नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, लाल बत्ती से जिग जैग बनाकर गाड़ी निकाल लेते हैं, मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं। कितने नौजवान मर गए हैं एक्सीडेंट के अंदर, कितने ही नौजवान। ये आदतें शुरू से बच्चों के अंदर दिमाग में डाल दी जाए ना, तो बिल्कुल बच्चे जो हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं केला खाकर ना छिलका, मैं अपनी बात करता हूँ किसी की, इसलिए नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, मैं छिलका सड़क पे फेंक देता हूँ, बूढ़ा आदमी ताके फिसले और गिरे और मैं हंसूं और उसकी वीडियो बनाऊं। पाकिस्तान में ऐसा ही तो होता है। मैंने देखा एक बच्चा 5 साल का चिंगम मुंह से निकाल कर, तो वो डस्टबिन ढूंढ रहा था, डस्टबिन ढूंढ रहा था कि मैंने ये चिंगम चबा दी है, अब इसको मैंने सड़क पे नहीं फेंकना, मैंने डस्टबिन में फेंकना है। ये मुल्कों की तरक्की का राज, अपने बच्चे को बार नहर से साइंसदान बनाने के लिए और चांद पर जाकर दूरबीन लगाने के लिए तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ने प्लेन पकड़ना है, एम्बुलेंस आ रही है और जनाब 20 गाड़ियां दाएं, 20 बाएं, 20 आगे, 20 पीछे, पूरी सड़क खाली उसके लिए करा लेते हैं कि भी वो जो है जा रहा है गवर्नर हाउस। अपने दफ्तर जा रहा है, तो फिर तरक्की कैसे होगी? यहाँ हमें सीखना चाहिए। मुझे जब लोग मिलते हैं ना, बाद आदमी कहते हैं कि यार अगर 56 years has been spent here, यहाँ आपने गुजारे हैं 56 साल, तो आपने अभी भी कुछ नहीं सीखा। यार पैसा दौलत भी कमाओ, काम भी करो, आलीशान मकान भी बनाओ, प्लाजे भी बनाओ। 320 के उसके नसर मलक की रेडियो की खबर मेरे पास है, दुकानें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, रोटी कमा रहे हैं, अच्छी बात है। कोई नसर मलक ने रेडियो पर ये खबर नशर की थी 320 हमारे बंदों की है, लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों को तालीम भी दें, उनको भी साइंसदान बनाएं। एक लड़का आया अभी मेरी बात हुई ग्रोसरी की दुकान पे, उसने किसी एजेंट से नहीं कहा, उसने अपनी सीवी लगाई तो उसको माल्टा में, राजा गफूर साहब माल्टा ने इंटरनेट के ऊपर चेक किया, उन्होंने कहा इतनी तालीम इसके पास है, इतना इसका दिमाग ब्रेन है, ये पाकिस्तानी बच्चा है। उन्होंने उससे रابطہ कायम किया और कहा कि इसी वक्त इस्लामाबाद जाओ और वीजा लो। हम उसको उनको कह रहे हैं कि हम स्पॉन्सर हैं इस लड़के के, हमने इसको पाकिस्तान से अपने मुल्क में लाना है। वो गया, उन्होंने कहा तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारे आप पूरी तालीम ये पढ़ी है, हम आपको वीजा देते हैं। टिकट भेजा, वो आ गया। अब जब आ गया यहाँ पर, उसकी 1 लाख नौकरी है, मानेंगे आप? मकान उससे पहले उसकी बीवी बच्चों के लिए दिया हुआ था, बनाया हुआ था, मेरी मुलाकात हुई है चंद दिन पहले।
1: तो हाजी साहब, तो इल्म की कदर की जाती है ना, हर दौर में इल्म की कदर हुई है।
0: इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते रहेंगे, बस एक ही गुजारिश है। सिकंदर मलक कहता है कि मैं आजिज रहकर यहाँ तक आया हूँ, अपने बच्चों को आजिज़ी सिखाएं, किसी का गिरेबान ना पकड़े, किसी को डराए ना, धमकाए ना, और दावत देकर घर बुलाकर उसको माँ तेरी, भैन तेरी, और तेरी
1: और भी मुतालबा कर रहे हैं कि सफीर मोहतरम की 2 साल नौकरी बढ़ाई जाए, ये आपको ख्याल कैसे आया?
0: ये जनाब सबसे पहले आइडिया और ख्याल और इस तरफ तवज्जो जो मबजूल कराई है, ये जनाब राशिद अली साहब ने जो बहुत बेहतरीन जबरदस्त उन्होंने जो हमारी पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त की है कोलंबिया रेस्टोरेंट में, उन्होंने ये ऐलान किया सबसे पहले, और अच्छी बात हम हर जगह से लेते हैं। वो उन्होंने कहा है जी कि मेरी तंजीम, मेरे दोस्त, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं उन्हें भी कहूँ कि ये मौजूदा सफीर अभी, यार देखें मैं कौन हूँ, मैंने तो यहाँ के फर्श साफ किए, जर्मनी में मैंने 2 महीने प्लेटें साफ की। तो मुझे अम्बेसडर साहब कह रहे थे कि असलम यार तू आके साथ ना, कभी चाय भी नहीं पींदा है, मैं मुझे चाय की दावत दे रहे थे, ये जो अभी 2026-14 अगस्त को, तो मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैंने कहा मैं थक जाऊंगा, बच्चों के पास तमाम सबके पास गाड़ियां, ऐसा आदमी आज तक यहाँ नहीं आया अम्बेसडर, मैं आपको बताऊं। लेकिन मुखालफत फरिश्तों के भी हम करने वाले हैं, मुखालफत करनी है ना तो उसकी कमजोरी एक पकड़ लेंगे, कोई पकड़ेंगे, यार बंदे हैं, हमसे गलतियां होती हैं, आदम की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई थी, जन्नत में कहा था उस दरख्त से नहीं खाना, तो उनको इसलिए जमीन पर अल्लाह ने उतारा। हमारा अव्वल वालिद कुरान कहता है कि तुम्हारी तमाम इंसानियत का अव्वल बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वहां से अल्लाह ने एक आदमी।
1: बहुत शुक्रिया आई साहब, आपने बड़ी कीमती मालूमात दी। अब हमें टाइम में इजाजत नहीं दे रहा, अगले मेहमान जो हमारे पास आ चुके हैं इंशाल्लाह।
0: आखिरी 2 मिनट चले जी, वो भी आप
1: चले आज साहब, आप कह लें क्लोज कर लें।
0: नहीं बस मैं यही बात करनी है कि अपने बच्चों को जिसने तालीम दे दी ना, दौलत चोरी हो सकती है, दौलत पकड़ी जा सकती है, दौलत बरामद की जा सकती है, कहीं भी छुपाई हो, तालीम चोरी नहीं हो सकती। अल्लाह हाफ़िज़।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे हाजी असलम मेहर साहब जो कि आपको कीमती मालूमात दे रहे थे, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बयान कर रहे थे। सामान्य हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए दरअसल आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी ज़बान से जुड़े रहें।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: माशाल्लाह। और बड़ी खास तौर पे सेक्रेटरी साहब जो हमारे मौसम है, इनका बड़ा किरदार है हर चीज में।
1: आसफ साहब हैं, चौधरी नजीर हैं, आप हैं, एडी भट्ट है, पांच आदमी हैं। मुझे मालूम है कि जो है आप मिलजुल कर ये अखराजात बर्दाश्त करते हैं।
0: ये मेरे साथ मास्टर यकूब साहब भी हैं।
1: मास्टर यकूब साहब, हाँ जी मास्टर यकूब, मैं भूल गया, मास्टर यकूब, एडी भट्ट, मिर्जा रहमतुल्ला बेग, आसफ साहब और चौधरी नजीर साहब।
2: और सादिक साहब, और उसके अलावा जो हमारे हैं खलील साहब, पैटर्न खलील साहब हैं। यानी कि 8-10 लोग जो है ना बर्दाश्त हम करते हैं सारे ना मिलके। हाँ
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
3: जी सर जी, मैं आपकी बात ये चार्ट करता हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ। इस डेनमार्क में
1: जी
3: जितने भी हमारी कम्युनिटी बस रही है, बच्चे क्या हैं हमारे, या हम बड़े, हमारे बुजुर्ग, या हमारे यार दोस्त राजा गफूर साहब हैं, राजा गफूर साहब का एफर्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनके पास ये रेडियो हर एक किसी को मौका देते हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि राजा गफूर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया तो मैंने ये किया। तो मैं, हर इंसान को ये पॉपुलर करते हैं क्योंकि अपने इस रेडियो के प्लेटफॉर्म से। अम्बेसी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुल्क में जितनी भी कमाई है वो सारे अपनी जेब से खर्च करते हैं और पाकिस्तान का झंडा जो बुलंद करते हैं, और इनको रिगार्ड देना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए। जितने भी हैं जिधर जिधर भी ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है। तो पाक आर्मी जिंदाबाद, अम्बेसी हमारी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज मेरे भाई जान, अल्लाह हाफिज,
1: पाकिस्तान जिंदाबाद
4: जिंदाबाद जिंदाबाद। अली साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करें फिर इजाजत लें।
1: आसफ साहब का, लुबना इलाही साहिबा का, मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब का, और इससे पहले जनाब इजाज बुखारी साहब भी अपनी बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं, इखलाक के दायरे में करते हैं, वो हाइपर भी नहीं होते। हम तो बूढ़े आदमी हो गए 80 बरस के, हमारे साथ कोई जज्बात भी जो है ऐसे हो जाते हैं। बहुत प्यारी बात करते हैं बुखारी साहब, इजाज बुखारी साहब, शहनाज साहब, राजा साहब, अपने राजपूत साहब और लुबना इलाही साहिबा और दीगर। ये बड़ी अच्छी बात करके गए हैं राजा शनात, इन्होंने कहा कि ये रेडियो आपकी आवाज के ऊपर बार बार दावत देते हैं, हम इनकी टीम दावत देती है, असलम मेहर दावत देता है कि आए घर बैठकर बातें ना करें, आप अपने जज्बात का इजहार करें। और फिर मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, खुशी महसूस हो रही है, शोएब सरबर इतने बड़े अम्बेसडर हैं, बेहतरीन अम्बेसडर हैं, उन्होंने दिल मोह लिए हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी के। वो छोटे बड़े को सबसे सलाम लेते हैं, ऐसे भी आए हैं जो बात करना गवारा नहीं करते थे, और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं 14 अगस्त के मौके पर। मेरे पास भी तस्वीर है, आपके पास भी तस्वीर है, 5 आदमी बैठे होते थे 14 अगस्त के मौके पर। ये जगह थी, अभी जैसे आसफ राजपूत ने कहा, कुर्सियां भरी हुई हैं, उतने ही लोग खड़े थे, उतने ही लोग बाहर फुटपाथ पर खड़े थे यार, उन्हें गाड़ियां पार करने की जगह नहीं मिल रही थी। ये जनाब क्रेडिट देना पड़ेगा। और मिर्जा रहमतुल्लाह की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि 2 साल हुकूमत पाकिस्तान इन्हें मजीद और दे दे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ये पूरी दुनिया में रोशन करने वाला इंसान है। हमारा कोई रिश्ता नहीं, और यही है कि जो भी झंडा ऊंचा करे हम उसको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और जाने से पहले उनके एजाज में हमें जो ड्यूटी दोगे हम दावत करेंगे, और प्यारी दावत करेंगे शोएब सरवर की,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
2: जी। बहुत शुक्रिया राय साहब, आज आपने हमें मदद किया, और भैया एक बड़ी अच्छी आप बात आपने क्लियर कर दी कि लोगों को ये गलत फहमी होती है शायद ये मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी जब वो बरसर इकतदार होती है तो उन्हें शायद फंड्स मिलते हैं, जैसे हम मुस्लिम लीग नून है इनको शायद फंड्स मिलते होंगे पाकिस्तान से, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम बल्कि जब भी मौका मिलता है, कोई भी आफत आती है, पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान ही भेजते हैं। कभी हमने कोई फंड नहीं लिया किसी पार्टी से, किसी बंदे से, बल्कि जितने भी हम ओहदे दौरान है यहाँ पे 8-10-12 बल्कि ज्यादा है यहाँ पे, पर कुछ लोग नहीं शामिल होते, कुछ शामिल होते हैं देते हैं, जो शामिल हो जाते हैं हम उनसे वो भी अपना हिस्सा डालते हैं।

0: यानी कि अपने जेब से हम करते हैं सारा कुछ। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई फंड्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, कोई फंड नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं आ रहा, बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं मुख्तलिफ मौकों पे पाकिस्तान पैसे भेजते ही हैं। कोई भी आफत हो, कोई भी, जब वो अपील करते हैं पाकिस्तान से कि हमें इतने पैसे, हमें अपने इस लोगों की मदद के लिए पैसे चाहिए, या कोई आफत आ गई है उसके लिए पैसे चाहिए, तो हम उनकी मदद के लिए भेजते ही हैं। कभी हमने ऐसा कोई पैसा नहीं दिया किसी से भी। और दूसरी बात, जो शोएब सरवर साहब हैं, वाकई उनकी तारीफ करनी चाहिए। उनको हमें, इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी की तरफ से भी एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे कि इनका जो इकतदार है, जो इनका जो टाइम है, वो बढ़ाया जाए, ताकि जो इन्होंने काम किया है वो अपना अपना काम जारी रखें, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 2 साल के लिए। उनकी वाकई, उनकी बड़ी मेहनत है, उनको उनको इसका सिला मिलना चाहिए। इंशाल्लाह हम जरूर लिखेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। चीफ पैटर्न साहब हमारे मिर्जा बेग साहब, मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब भी सुन रहे हैं। इंशाल्लाह हम एक लेटर बनाकर भेजेंगे और उन्हें इस इनकी जो खिदमात हैं उनका नुमाया तौर पर जिक्र भी करेंगे। और देखिए,
1: अच्छी बात
0: उन्होंने, हाँ, उन्होंने जितनी भी बातें कल की हमारी, हमारे प्रोग्राम में या 14 अगस्त बैसी में, वो एक बड़ी अच्छी बातें थी। पीआई जो हमारे मसाइल हैं, उन्होंने वो बार बार जिक्र करते हैं इनका, चाहे पीआई का मसला हो या नादरा का मसला हो। मैं चाहता हूँ जो थोड़े बहुत मसले रह गए हैं, ये जाते जाते अपने हल करके जाएं, या इन थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है तो इसमें ये करें, ताकि इनका नाम हमेशा जिंदा रहे और हम भी इनको याद करते रहें। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने
1: बहुत
0: टाइम
1: शुक्रिया
0: दिया।
1: साहब का,
0: इंशाल्लाह
1: नायर साहब ने
0: बहुत
1: शुक्रिया अदा
0: शायद।
1: किया, बेग
0: मैं
1: साहब
0: एक
1: आपका
0: बात
1: बहुत
0: राजा साहब
1: शुक्रिया।
0: ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपना वॉचमैन जो है वो भेज रहे हैं चाइना के साथ, आजकल वो जो है वहाँ रिहर्सल कर रहे हैं खला में जाने के लिए, और फिर वो जब वॉचमैन वहां पे बैठेगा ना तो हमें बदनाम करने वाला, ये सुन ले कि उसको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम जो बैरून मुल्क मुकीम है, हम उनको वो चीज भेजेंगे जितना सरमाया चाहे भेजेंगे, जितनी जरूरत है भेजेंगे, लेकिन वॉचमैन को चांद पर बैठा नहीं बैठाना है।
1: बाकी मेहर साहब अपना आसिफ, एक खबर हमारे मीडिया के रिडार में घूम रही है, जो हमारे हमारा रिडार है उसमें आ गई है कि मुस्लिम लीग हाउस एक नया बन चुका है, जो जो ये क्या बात चल रही है, या कि वैसे ही हमारे पास कोई
0: नहीं
1: ऐसे
0: नहीं
1: रिडार में गलत खबर आ गई?
0: ये नया नया हाउस नहीं बना। देखें, यहाँ पे पार्टी की मजबूत पार्टी है, बरसर इकतदार पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, तो उसके एक, देखें, इतने ज्यादा प्रोग्राम कभी कोई पार्टी नहीं कर सकती। जैसे दूसरी पार्टियां कहती हैं जी हम बड़े बड़े, हमारे लोग हैं, हमारे बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन वो भी इतना बाकायदगी से प्रोग्राम नहीं कर जिस तरह हमारी पार्टी कर रही है। जितने मलिक सदीक साहब थे वो करते रहे हैं, उसके बाद रहमतुल्ला बेग साहब हैं वो करते रहे हैं और कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। तो ये है कि हम यहाँ पे इसलिए, एक दफ्तर पहले बना हुआ है और दूसरा दफ्तर एक नया बना, नया नया बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये नहीं है कोई नया, कोई लहदा, कोई लहदगी लहदा का दफ्तर बन रहा है, बल्कि ये कि उसका हिस्सा है सब हमारी पार्टी की जो है यहाँ पे, जो पार्टी चल रही है, जो जिन पास नोटिफिकेशन है, वो एक जिस तरह पहले दफ्तर है, इस ये जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने अपना दफ्तर बनाया है,
1: आसिफ
0: इसका
1: से
0: और भी कोई
1: लुबना
0: बना
1: इलाही
0: सकते हैं
1: साहबा
0: ऐसे?
1: को शामिल तो नहीं होंगी आपकी जमात में?
0: नहीं, लुबना लाई साहब नहीं है, मैं है, वो अभी भी उनकी हमदर्दियां पहले पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उसके बाद पीटीआई के साथ हैं, उनके वो अभी मिला जुला उनका चल रहा है, तो देखें अब वो किस तरफ उनका रुख बनता है, वो अपनी
1: और
0: मर्जी के। हाँ जी,
1: बेग साहब
0: हाँ जी,
1: आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ आपका बहुत शुक्रिया, राजा शनाथ साहब आपका शुक्रिया, बाकी भी जितने मेहमान थे, अब अगले मेहमान जो है वो चंद लम्हों के बाद हमारे साथ होंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: आपको ये मेडल मिलने से सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे वालिद साहब का जो एक ख्वाब था, मेरे वालिद साहब का जो एक एक कोशिश थी, और मेरे वालिद साहब का अब नाम जो है ना वो रिकग्नाइज हो गया है, हुकूमत पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया है, मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो अमर हो गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं बहुत ही हम्बल और बहुत होके बहुत ही आजजी में मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इतना प्यार दिखाया, इतना साथ दिया, हर इलेक्शन में साथ दिया, हर बार जाहिर बात है बीच में हमेशा आप सियासतदान होते हैं उसमें आपके खिलाफ भी लोग होते हैं और जिसकी मुखालफत ना हो तो आप समझे वो मुनाफिक है। हजरत अली का कौल है कि जिसके दुश्मन ना हो, जिसके जिसको सब पसंद करते हो तो समझे वो मुनाफिक है, और अगर आपने किसी को परखना हो ना तो आप ये देख लें कि उसके मुखालफीन कौन है, जितने उसके मुखालफीनों से बंदा पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो हमारी यहाँ की जो कम्युनिटी है उसने क्या कहते हैं बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया है। हाँ कुछ यहाँ की जो रेसिस्ट पार्टीज हैं वो मुखालफत करती है, यहाँ की जो ज़ायनिस लॉबी है वो मुखालफत करती है, और उससे साथ एक दो कम्युनिटी के लोग होंगे जो जिनकी अपनी राय होगी मुखालफत करती है, लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह पाक से कि मुझ में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी लेकिन उन्होंने मेरे वालिद साहब का ये जो ख्वाब था, मेरे वालिद साहब के नाम को जो ऑनर किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैं बेहद खुश हूँ इस बात से। मैं घर पे हमेशा फैमिली को भी ये कहता हूँ, जाहिर बात है किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुद ही की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है टेनिस सियासत में, अभी भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वालिदैन के वालिद साहब के जो सबक था, जो तालीम था उसमें मैंने तालीम थी उसमें मैंने कोशिश की चलने की, और मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि मुझे अल्लाह पाक ने वसीला बनाया कि नाम जो सिद्दीक नाम है वो पाकिस्तान की स्टेट ने जो है रिकग्नाइज किया है, ये मेरे वालिद साहब के लिए बड़ी ऑनर की बात है, और मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो क्या कहते हैं स्टेट लेवल पे रिकग्नाइज हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अल्लाह पाक ने जो है मुझे वसीला बनाया है और ताकि मेरे वालिद साहब का ये नाम इस तरह हो। आज वो होते वो बहुत खुश होते, तो मैं कब्र पे गया उनके तो वहां भी मैं मेडल लेके गया, और ये जरा एक इमोशनल बात है मैं बता देता हूँ। वहां पे मैंने वालिद साहब को मेडल दिखाया, मैंने कहा वालिद साहब देखें जी आज आपका बेटा मेडल ले आया, आज आपका नाम सिद्दीक जो है वो आज पाकिस्तान की जो जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो पाकिस्तान की जो स्टेट है, आज उनकी जो कॉरिडोर्स हैं उन पे आज आपका नाम जो है वो गूंज रहा है, आपका वो रिकग्नाइज्ड है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक उनको जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए और उनकी उनकी जो जो जो ये अब सफर है बरज़ख का उसको आसान फरमाए। तो बात यही थी कि जो मेडल है ना, कुछ लोग जो है जिनको शायद तकलीफ होगी या सियासी मुखालफीन है,
1: सिकंदर इस पर हम बात करेंगे, गो के आपने टाइम मुझसे मांगा था कि आप मुझे टाइम दें, मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपको टाइम देंगे, चूंकि मैंने किसी और से भी वादा किया हुआ था अपने मेहमान से, तो आपका टाइम है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आपका जवाब देना आपका जमहूरी हक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि आज हमारे पास वो टाइम नहीं है, तो आपने अपने मेडल की वजाहत की, थोड़ी सी वजाहत मैं भी करता चलूँ। आपको याद होगा कि कभी इस हिस्ट्री में हुआ कि पार्लियामेंट में जाकर किसी को शील्डें दी गई हों, पार्लियामेंट में जाकर किसी को रिकग्नाइज किया गो, क्या इस हिस्ट्री में कभी हुआ? वो हमने मैंने जो है एलओ के साथ मिल के, स्टेट मिनिस्टर थे पॉल न्यूरप उस वक्त बड़े पावरफुल वजीर आजम थे, हमने उनसे ऑफिशियल मीटिंग की, जिस तरह दो मुल्कों के सरबराह आपस में बात करते हैं, इस तरह की हमारी मीटिंग थी, मिनट्स लिखे गए, तो ताकि लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ वाजपेयी साहब तशरीफ लाए थे, उस वक्त के वजीर आनस जो थे उन्होंने स्टेट डिनर दिया था, उस स्टेट डिनर में मैं मौजूद था। कभी इस तारीख में हुआ कि कोई स्टेट डिनर में इस तरह को गेस्ट बना हो? कभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बंदा वो गिनने शुरू करते तो बहुत सारी बन जाती हैं, या मेडल कोई किसी को वैसे नहीं दिए जाते, उसमें बहुत सारा उसके पीछे काम होता है, इसलिए मेडल दिए जाते हैं। सिकंदर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपने कहा था कि मुझे टाइम दे, मैं कुछ चीज़ों पे बोलना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर अगले हफ्ते टाइम दे दूंगा।
0: ठीक है राजा साहब, जिन चीज़ों पर मैं बोलना चाह रहा था वो

0: तो अभी बोला ही नहीं हो, चले इंशाल्लाह
1: नेक्स्ट। इसके अंदर मैं आपको टाइम दूंगा जो है ना, आपको पता है हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, फिर हमारे लिसनर बहुत सारे सुन रहे होते हैं, मेरा वादा है आपका जमहूरी हक है, मैं आपको टाइम दूंगा।
0: ठीक है, और राजा साहब मैं आपको एक आखिरी बात ये जरूर कहूंगा कि आपकी शील्ड को लेके ना काफी धुआं उठा है, और मैं आपको यही कहूंगा जो जलने वाले हैं उनको जलने दें, जो इस वक्त जिनको दर्द आपकी शील्ड के ऊपर दर्द हो रहा है उनको दर्द होने दें, अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है। आपने बहुत काम किया है, आपको ये मेडल मिला है, आप इसके हक, आपको ये शील्ड मिली है, आप इसके हकदार थे, और जो जलते हैं उनको जलने दें।
1: सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपका टाइम आपको मिलेगा। समय नाजरीन ये थे मलिक सिकंदर सदीक जो कि सितारा इम्तियाज़ हैं, जिनको मिला, हमें शील्ड मिली, हमारी कम्युनिटी को शील्ड मिली है। ये देखें हर चीज़ होती है, हम कम्युनिटी के लोग हैं, एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, और हमें बहुत सोच समझ कर बातें करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। चूँकि लाइव प्रोग्राम में होते हैं तो लाइव प्रोग्राम में आप कितना कुछ किसी को सामने बैठा हो तो बंदा कोई इशारा कर लेता है, कोई बात कर लेता है, तो इस तरह जो बात सारी होती है। बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: ठीक है, ठीक है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।